नेशन की फन स्टेशन फन एशिया रेडियो पर 200 आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू द फन एशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरवान, जहां पर होती है मोर वैरायटी, मोर चॉइसेस, मोर फन ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फन एशिया नेटवर्क। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर के साथ ही आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। रोड ट्रिप सफर के गाने चल रहे हैं आज यहाँ पर स्टूडियो की घड़ी में, हो चुके हैं 5 मिनट्स पास्ट 7। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको बहुत ही अमेजिंग रोड ट्रिप और सफर के गाने पे चलती हूँ। आपकी अगर लैम्बर्गिनी है तो बहुत ही सही, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये गाना सुनिए और लैम्बर्गिनी में ट्रैवल करने का फील लीजिए। एंजॉय दिस ट्रैक।

नेहा कक्कर और अर्जुन खनंगो की आवाज में सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना ला ला ला। जी हाँ, हमारे शो में आज गाने चल रहे हैं ट्रैवल पे बेस्ड और रोड ट्रिप्स पे जो ट्रैवल स्पेशल गाने चल रहे हैं यहाँ पर। सो बहुत ही मजा आ रहा है ऐसे गाने सुनने में आप सबके साथ। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 4699429888 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट व्हिच इज agfintechs.com।

उदित नारायण जी की आवाज में दोस्तों स्वर इस मूवी से सुन रहे थे आप ये गाना। यार रहमान साहब का म्यूजिक था और शाहरुख खान पे पिक्चराइज थी ये मूवी। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। आधे घंटे का शो बचने वाला है हमारा। इस आधे घंटे में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ एक अमेजिंग सा गिव अवे, सो स्टे ट्यून्ड टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो।

0: रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Oura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
9: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
10: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
9: सच में बिल्कुल घर जैसा।
10: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो के कड़ी में हो चुके हैं 33 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। आज के शो में दोस्तों हम गाने सुन रहे थे रोड ट्रिप्स पे बेस्ड। जी हाँ, सफर के गाने, रोड ट्रिप्स के गाने। लोग सफर पे जा रहे हैं, ऐसे पिक्चराइजेशन जिसमें दिखाया है वैसे गाने आप सभी को सुनवा रही थी। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज प्रेजिंग एंड गिविंग योर लव टू ऑल ऑफ अस बिकॉज दीज आर ऑल द थिंग्स विच कीप्स अस गोइंग। एंड इसीलिए आपके लिए कुछ वैरायटी लेकर आने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है और यही कोशिश रहती है कि हमेशा हर वीक हर हफ्ते आके आपको कैसे फुल्ली एंटरटेन रखे। वेल फनीशिया का तो मोटो ही है फुल ऑन एंटरटेनमेंट 24/7 hours 365 days a year। हम आपको फुल्ली एंटरटेन, इन्फॉर्म्ड और बहुत ही ज्यादा म्यूजिक से रिलेटेड रखते हैं। चलिए विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले गाने की तरफ। अगले आधे सेगमेंट, आधे घंटे के सेगमेंट में गाने बहुत ही हल्के फुल्के चलते रहेंगे और एक गिव अवे आने वाला है आप सबके लिए। सो कीप लिसनिंग टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

इंतजार की घड़ी दोस्तों हो गई है खत्म, लेकर आ गई हूँ आपके लिए अमेजिंग सा गिव अवे विच आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। So, dosto, if you are craving something cheesy with a desi twist, you can head to Fun Pizza Kitchen where flavor meets a fire. So, for all the veggie lovers, you can try the Achari Paneer Pizza, which is packed with that tangy achar punch and soft paneer melting in spicy magic. And for the meat lovers, the Tandoori Chicken Pizza is pure smoky perfection straight from the tandoor to your taste buds. So whether you like it bold or beautifully balanced, there is a slice waiting for you at Fun Pizza Kitchen. For more details, you can visit funpizzakitchen.com. So, Fun Pizza Kitchen से रिलेटेड मेरे पास गिव अवे है आपके लिए। अगर मैं आपने मेरे सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो आप जीत सकते हैं Fun Pizza Kitchen की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जी हाँ, सो हमारा जो नंबर है 9722355555, अपने फोन के स्पीड डायल पे रख दीजिए और मेरे सवाल का इंतजार कीजिए। सवाल ये है दोस्तों कि ये जो अगला गाना मैं प्ले करने वाली हूँ उसको सुन के आपको मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है बॉलीवुड की जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। आज की डेट है 17th of May 2026, तो आपको मुझे ये बताना है ये अगला गाना सुनकर कौन सी ऐसी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और जीत जाइए फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, बिल्कुल फ्री। और ये रहा आपका गाना।

जी हाँ, यो हनी सिंह, दिल चोरी साडा हो गया। सुने थे दोस्तों आप, टेकन फ्रॉम द मूवी सोनू के टीटू की स्वीटी। और सवाल मैंने आपसे ये पूछा था कि बॉलीवुड की ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो आज अपना 17th मई 2026 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सो द करेक्ट आंसर इज नुसरत भरूचा। जी हाँ, नुसरत भरूचा जी का आज है बर्थडे। सो विशिंग हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और इस सही जवाब को मुझे सबसे पहले दिया है सुलोचना जी ने। सो कंग्रेचुलेशंस सुलोचना जी फॉर विनिंग द फन पिज्जा किचन $10 का गिफ्ट कार्ड। चलिए भाई, बल्ले बल्ले हो गया है, तो चलिए नुसरत भरूचा की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हुए और एक गाना सुन लेते हैं उनकी ही मूवी का, सोनू के टीटू की स्वीटी। ये वाला गाना सुनेंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय कहने का समय आ जाएगा हमारे पास।

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 53 मिनट्स पास्ट 7। यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना रहती है। With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और कहती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा। दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड एलिस एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड। बाय बाय एंड गुड नाइट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Is sheher ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
4: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 469-298-3870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डॉलर्स. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
14: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
12: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
14: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
12: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट. अटेंशन स्टोर ओनर्स, रवि's Summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas, 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: थक सकते हो,
1: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
2: क्योंकि ये कौन बोला?
1: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
3: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
6: चिकन बनाना
7: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
8: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
9: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
10: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
9: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com. देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे। Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization, NDAW.
10: Turn it up! Bro!

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Panacea Radio.

0: मैं हूँ उमर शरीफ और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं फनेशिया।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Phonasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: Club Phonasia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये है।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Panacea Radio.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है।

0: अल्लाह मेहरबान। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

दूंगा दिल तेरा लेके ही तो लेके बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट

0: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कर फट जाए। कर फट जाए।
1: Playing the music you want all day, every day, only on Fun Asia Radio.

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा।
1: उसका बाप भी बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में पड़ चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.
5: एक बेटा बच गया सायरन,

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Tune sunte hi brand click kar gaya na. Just like that, when it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
2: Hi, this is Vinay Pathak and you are listening to me on Fun Asia Radio.

0: कुतलिया
1: कुंची चुम्मी घेतली.
2: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.

कर ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
1: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
2: भूख लगी
3: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
6: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
7: प्लान या होप?
6: मतलब है
7: प्लान, मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
6: ओके, तो मेरा वाला होप है।
7: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
6: क्यों?
7: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
8: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: घर की याद नहीं आई तुझे? जब से
14: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
15: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
14: सच में बिल्कुल घर जैसा।
15: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
16: हाय गाइस, दिस इज टाइगर श्रॉफ, एंजॉय फन एशिया रेडियो।

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
4: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
3: रोज का सेम प्रॉब्लम।
5: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
6: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
7: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
8: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट month. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
9: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1. Mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2. Masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3. Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
2: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
9: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: And that, ladies and gentlemen, is my show for today. I do hope you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10. For those of you who'd like to reach me directly, 214-675-1754 is my number. And I will see you all at 7 tomorrow morning. It's 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
3: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
2: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
4: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
5: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere bare mein.
6: Kyunki ye kaun bola?
5: Ye hum bol rahe hain. Aapke ghar ka duct, jisme hai dust, pollen, allergens jaisi cheeze hain, jo aapka comfort chheen rahi hain. Aur agar aap sochte ho ki mera to ghar naya hai, mera to saaf hi hoga. तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
9: K2 ड्राइव मतलब?
10: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
16: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
15: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
16: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
17: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.

दिस इज़ गपशप गली विथ मीठू, जहाँ पे हम भी आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं और इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ रहता है ना, हम आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं. सो आई डू वॉन्ट टू टॉक अबाउट अटर्नी ओमर ख्वाजा, बिकॉज ही इज़ द गाय दैट यू नीड टू गेट इन टच विथ. अगर आपके कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हुआ है, वर्क प्लेस इंजरी है, या कुछ एक्सीडेंट में पड़े हैं जहाँ पर आप को लगता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन वंस अगेन आई थिंक वी मैनी ऑफ अस, लेट्स नॉट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट हियर, लेकिन कई हम में से लोग हैं जो कि इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमारे लिए झमेला ही होता है टू गो बैक एंड फोर्थ विथ द पीपल टू गेट दैट कॉम्पनसेशन. और ऐसे में ना हम सोचते हैं कि ठीक है यार, जो हो गया छोड़ो करके हम आगे बढ़ जाते हैं. सो दिस इज़ वेयर अटर्नी ओमर ख्वाजा कम्स इन टू पिक्चर. वी वॉन्ट यू टू गेट इन टच विथ हिम, क्योंकि इनका एक सिंपल सा फंडा है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस देंगे, यानी कि आप अपने केस के बारे में उनके साथ पूरा सब कुछ शेयर करेंगे, सारा डिटेल्स, एंड देन द हेडेक इज देयर्स. उसके बाद जो उनका सबसे बड़ा प्रॉमिस जो आपके लिए है कि आपको पे नहीं करना जब तक आपको कॉम्पनसेशन मिल नहीं जाता. सो इट इज एज सिंपल एज गेटिंग इन टच विद अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, और वहां से वो डायरेक्शन देंगे टू द केस एंड वो लेकर जाएंगे आपको टू द कॉम्पनसेशन. सो यस, गेट इन टच विद हिम. 4693005046 इज दैट नंबर. attorneyomer.com इज द वेबसाइट. A big shout out to Ishita Chatterjee. Because of her, I came to know of the existence of this song. I think this was end credits जब रोल कर रहा था Rock On फिल्म में, तब ये चला था. तो मुझे लगता है मैं थिएटर छोड़ के जा चुकी थी तब तक, या जा रही थी, and was probably talking about how fantastic the movie was, starring Farhan Akhtar, Arjun Rampal, Prachi Desai and others. कि इस गाने पर ध्यान नहीं दिया. बाद में जब इशिता चैटर्जी से सुना मैंने, A friend of mine that I can very proud, I'm very proud to say, because she was part of the Jam Lounge, which we did with all of you on May 1st. Can't believe it. It's already 17 days past that. What fun that was, ladies and gentlemen. We'll bring it to you again.

0: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
1: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
0: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
1: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
0: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
1: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
0: नंबर बोल जल्दी।
1: कॉल James at 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
2: Connecting America, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न costs into cash।
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8683464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US. 104.9 FM, Fun Asia Radio.
9: Tracks that put you on the right track.

एंड इट इज गपशप गली विथ मीठू, जहाँ पे हमारी बातें कंटिन्यूड रहेंगी. और अगली सेगमेंट में हमारे साथ हुसैन पंचवानी साहब जुड़ेंगे फ्रॉम ड्रीम होम मोर्टगेज, एंड ही गिव्स अस सो मेनी टिप्स एंड एडवाइजेज फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स, या अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप सबके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM. और हमेशा से मानते आए हैं, सिर्फ मैं नहीं लेकिन दुनिया मानती आई है कि भाई गाना और खाना बिल्कुल एक साथ चलते हैं. तो इसीलिए कुछ खाने की बात हो जाए, पेज 3 ईटरी की बात करना चाहती हूँ. यहाँ पे सिजलिंग कबाब्स हो या बहुत ही फ्लेवरफुल उनका चाट हो, वो जो फ्यूजन बाइट्स लेकर आते हैं, और कुछ रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स हैं इनके पास, पेज 3 ईटरी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा. द एम्बियंस इज बिल्कुल अलग, सीरियसली, फॉर द इंडियन रेस्टोरेंट्स दैट यू सी अराउंड, बहुत अलग सा वाइब आपको वहाँ पे मिलेगा. एंड आई वांट यू ऑल टू विजिट दैट प्लेस विद दैट वेरी मॉडर्न फ्लेयर इन देयर फूड एंड इन देयर एम्बियंस एज वेल. चाहे वो ब्रंच हो, लंच हो, डिनर हो, डेट नाइट हो, फूडी मीटअप हो, कुछ भी हो, पेज 3 ईटरी जरूर जाइएगा, बिकॉज इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, पेज 3 ईटरी जो कि हब 121 पर है, और मैं न जाने कितनी बार चक्कर लगा चुकी हूँ वहाँ पर. अमित जो है हमारे सर्वर के साथ, ऐसी दोस्ती हुई है ना कि उसके बिना नहीं चलता मेरा यार, मज़ा आता है उसके साथ गप्पे मारने में. भाई मैं हूँ ही गपशप गली जहाँ पर गपशप करने में हमें मज़ा आता है, तो बस गप्पे जहाँ लगाने का मौका मिलता है छोड़ती नहीं हूँ भाई.

0: You are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM, bringing the community together. And together we, strike a conversation here. And 11 se 12 ke beech hum kuch ek topic lekar aate hain jis pe aap aur hum kuch guftgu kar sake, kuch gapshap kar sake. And bade light hearted topics hote hain, kabhi kabhi kuch thode agar heavy bhi ho. We don't want to go the heavier route, kyunki hum chahte hain ki ek maze wala experience ho when you are tuned into Fun Asia Radio 104.9 FM. Yet there are few things that can give you that platform to talk. So yes, we'll do that entire through the week. We'll do this, and 11 to 12 hamara designated gapshap wala time rahega ki aap on air aake hamare sath baat cheet kar sakte hain. And regarding that, my Insta handle is RJ Meetu Ganguly, and I want you all to send me the questions that you would want me to take up on my show. All right. So once again, RJ Meetu Ganguly. So MITHU, that's how you spell my name, and GANGULY. So yeah, send me a DM or something and we'll figure out from there. I want maximum participation. So I want topics that connect to you. So keep listening to Fun Asia Radio 104.9 FM.
1: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना जस्ट लाइक दैट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ओनली वन नेम पॉप्स अप एजी फिनटैक्स दिस टैक्स सीजन फॉर अ स्ट्रेस फ्री टैक्स फाइलिंग फाइल स्मार्ट फाइल इजी विद ग्रंथी टैक्स प्रोस एंड एसोसिएट ऑफ एजी फिनटैक्स साथ ही साथ आपका रिफंड मैक्सिमाइज करना और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करना दैट्स आवर कमिटमेंट तो इस बार डिले क्यों कॉल 972-618-8555 और विजिट agfintax.com ग्रंथी टैक्स प्रोस पावर्ड बाय एजी फिनटैक्स प्लान टुडे प्रॉफिट टुमारो
2: भूख लगी
3: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
4: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
5: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू Page 3 हब 121 मैकिनी
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to WealthTactic.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
8: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
8: इफ यू होल्ड H1B F1 L1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Chicken, banana.
12: चिकन बनाना
13: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
14: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
15: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity, hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
16: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio. 104.9
0: right, once again, घड़ी मिला लीजिए. It is 43 minutes past 10 by the studio clock. और आज की तारीख है 18th of May and it is Monday. बिल्कुल perfect day, perfect time to tune in for all of you because we'll make sure that it is entertaining and informative as well. क्योंकि Monday का दिन होता है जब हम Mr. Hussain Panchwani from Dream Home Mortgage, we chat with him and find out so many useful advices that we get from him. And as promised, इस वक्त फिर हमारे साथ Mr. Hussain Panchwani जुड़े हैं और real estate को समझने के लिए और फिर invest करने के लिए जो भी आपके दिल में सवाल होंगे, hopefully वो सारे सवाल हम आप तक पहुंचाएंगे और उनके जवाब भी. From Mr. Hussain Panchwani, dreamhomemortgage.com is the website and I want you all to remember the number to call. It is 972-245-5626. और अगर आप email करके कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें. info@dreamhomemortgage.com is the website. Let's have the man of this segment on the airwaves of Phanisha Radio 104.9 FM. Good morning, Hussain Sahab. और सबसे पहला सवाल, कैसे हैं, क्या रहा वीकेंड का हाल?
2: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रहे. आप कैसे हो? I hope आपके listeners सब ठीक है. ये Texas की weather enjoy कर रहे हैं as much as possible.
0: I know it is so windy outside. मेरे ख्याल से आप तो सुबह सवेरे काम पे लग जाते हैं तो आप जानते हैं कि मौसम जो है actually अभी फिलहाल बहुत अच्छा है.
2: टेक्सस का वेदर वही है ना, कभी खुशी कभी गम, ठंडी कभी गर्मी, वही चलता है.
0: बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप जानते हैं ना, जिस तरह से फिल्मी बातें आप ले आते हैं ना अपनी बातों में, यू आर एट द राइट प्लेस. वेल, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस हवरिंग इन माय माइंड. तो शुरू करें हम थोड़ा सा आपसे कुछ एडवाइस लेने का सिलसिला.
2: कोशिश करूंगा टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस एज मच एज पॉसिबल.
0: थैंक यू सर फॉर योर टाइम, वी ऑलवेज अप्रिशिएट. तो क्या है ना कि टैक्सेस की बात कर रहे थे, तो टैक्सेस के जो स्टेट इनकम टैक्स जो होता है ना, वो हमें पता है कि नहीं होता है. DFW में प्रॉपर्टी टैक्स डेफिनेटली है और हाई भी है, राइट? तो जब लोग अपना बजट बनाते हैं तो वो सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देखते हैं और फिर आगे पीछे सब कुछ भूल जाते हैं. जो हिडन मंथली कॉस्ट होता है, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, होम इंश्योरेंस के बारे में बात हुई, उसको कैलकुलेट करने के का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, यू नो, ताकि क्लोजिंग के बाद उनको कुछ स्टिकर शॉक ना लगे?
2: तो सबसे पहली बात तो अच्छी बात है कि हम जब AI को यूज करते हैं, हम इंटरनेट पे जाते हैं हर चीज के लिए
0: जी.
2: लेकिन जैसे आपने बोर्ड यूज किया बजट बनाने के लिए,
0: हाँ, हाँ.
2: जब आप बजट बनाते हो तो एटलीस्ट ये दिमाग में रखिए कि टैक्सेस की प्रॉपर्टी टैक्स लाइक यू सेड इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेस. इंश्योरेंस लास्ट चार साल में, पांच साल में ऑलमोस्ट हैज ट्रिपल्ड द होम इंश्योरेंस. और बहुत से जो फर्स्ट टाइम बायर है, यू विल बी सरप्राइज कि दे हैव नो आइडिया व्हाट इज मॉर्गेज इंश्योरेंस. उन्होंने घर शॉप अराउंड कर दिया है, घर पे कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है मॉर्गेज इंश्योरेंस. सो आई वुड रियली रियली एडवाइज और टेल एवरी बोरोअर के बिफोर यू स्टार्ट शॉपिंग फॉर अ होम, प्लीज टॉक टू अ मॉर्गेज प्रोफेशनल, मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद द पेमेंट्स एंड यू आर कंफर्टेबल हाउ मच मनी यू नीड टू ब्रिंग एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग. प्रॉपर्टी टैक्सेस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, विद इन द सेम सिटी, फ्रॉम वन नेबरहुड टू अनदर नेबरहुड. कभी कभी यू विल बी सरप्राइज्ड, द न्यूअर नेबरहुड माइट हैव समथिंग कॉल्ड PID, PID और मड टैक्सेस. जो नए नेबरहुड में नया बिल्ड हो रहा है, जहां दे चार्ज यू एक्स्ट्रा टू ब्रिंग पावर लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन अबाउट, दैट कैन डबल योर टैक्सेस. एंड दीज आर नॉट स्मॉल फिगर्स, दीज आर आपका प्रॉपर्टी टैक्स जैसे 400-450, सडनली इट्स $700-800. सो दैट्स ऑलमोस्ट 10% इंक्रीमेंट इन योर पेमेंट, 7-8% इंक्रीमेंट इन योर पेमेंट. सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टॉक टू अ मॉर्गेज प्रोफेशनल. मेक श्योर के हमें 5 लाख का घर चाहिए, हमारी ये पेमेंट आएंगी, हम कौन से नेबरहुड में ले रहे. आप नया घर लेते हो तो प्लीज आस्क द सेल्स पर्सन, इज देयर एनी PID, इज देयर एनी मड टैक्सेस. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात जो मी टू, यू बी सरप्राइज हाउ मेनी टाइम्स आई गेट दीज कॉल्स आफ्टर क्लोजिंग आफ्टर अ ईयर, Hussain, by my property tax, my payment went up by $1,000. My payment went up by $1,200. What happens is, especially in the newer homes, what happens, some of the lenders, and not criticize anything, that's the way the practice has been, where some of the taxes, some of the lenders will collect taxes just on land.
0: Achha.
2: So think about it. Aapka actual property taxes should be around $800-$900. They're only collecting $100-$150. Mm-hmm. Now, you're buying a house in 2026, okay, aapka ye saal taxes assessed hua hai just on land. You're very happy. A mortgage company told you your payment is supposed to be $4,500. It's around $3,600. Great.
0: Mm-hmm.
2: 2027 mein bhi aapne wahi payment kiya hai, jaise aapko sticker shock aata hai 2028 mein, jahan aapki payment suddenly 3600 se 5500 ho gayi. Why? Because you paid less, you were short on your taxes for the year of 2027, and then the mortgage company will project ke 28 mein bhi aapki payment utni hona chahiye. So aap 28 ke liye $900 short ho, 27 ke liye $900 short the, so now you have to make payments, they'll increase your payment by almost $1,800.
0: Okay.
2: So especially those of you, I appeal to you guys, I request you guys, that jinhone bhi ghar 2027-28 mein brand new ghar kharida hai, make sure you, at least minimum your property taxes should be 1.75, and if you have paid, it should be around 2.25% to 2.5% of the value of your house. And still, agar aapko koi bhi doubt hai, you can always call us, send us your mortgage statement. I always tell our clients, consultation is absolutely free. I can advise them, hey, this is, you'll be short on your taxes by this much. Please start making payments towards that escrow account. Do not wait for that. Then suddenly, after 2 years, your payments will go up, like I said, by $1,000, $2,000. And we have seen that very, very often for brand new homes.
0: So once again, to my listeners, don't hesitate to get in touch with Mr. Hussain Panjwani. And that free consultation, everybody must avail this one. Sabko lagta hai iske na kuch fine lines honge. Definitely free consultation kaise ho sakta hai. Lekin sir ji, bataye aap iske baare mein.
2: Nahin, like I have told you, I owe this to the community. Hume 28 saal se aap log ne support kiya hai. So I just feel it's time to pay back. And if you need us in future, you will call us. So, but I, मुझे नहीं चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में भी कोई भी क्लाइंट फॉरक्लोजर फेस करे या वो दिक्कत फेस करे. When there are so many multiple mortgage companies that can help you, at least I can proudly say a dream home. I'm ऐसा नहीं कि हम आपका क्रेडिट कार्ड नंबर लेते हैं और यू टेल फ्यूचर में कुछ करना है, हम कमिटमेंट लेते हैं. यू कॉल अस, यू सेंड अस अ मॉर्गेज स्टेटमेंट दैट हुसैन, आई हैव दिस क्वेश्चन, आई हैव दिस डाउट, कैन यू हेल्प मी, एंड वी हेल्प देम ऑल द टाइम. एंड आई फील, एंड like you said, not trying to be any filmy or anything, but the fact is, we owe it to the community. They have supported us for 28 years.
0: So thank you very much for all the information that you send across. I want to tell my listeners, they have the best loan programs, be it first-time home buyers who are trying to reach them, or self-employed loans with no tax returns, cash-out mortgage refinance, and then adjustable rate mortgage, VA loans, bad credit loans, commercial loans, FHA loan. They have the entire plethora of the loan programs. All you have to do is get in touch with them. 972-245-5626 is that number to call. And dreamhomemortgage.com is the website. And sir, before I let you go, Hussain Sahab, kuch aur agar aap batana chahte hain, current two times ke saab
2: se. Do teen cheez pe highlight karunga, I'll make it as quick as possible.
0: Absolutely.
2: Ek, I am seeing a lot of you guys calling us for cash out refinancing. But some of you are again calling us after the fact, when you fall behind on the payment. Or you'll be surprised ki kitne log mujhe call kar sakte. I would have been able to help them 2 months before, or 2 months if they would have called us 2 months ago.
0: Yeah.
2: So please do not wait. Agar aap log koi bhi payments aap dikkat face kar rahe ho ki hame ye payments karne mein takleef ho rahi hai, ye payments karne mein takleef ho rahi hai, you are juggling between this payment not to make. Aur aapke paas, if you are a homeowner, you have equity in your house, call us. We will honestly advise you, hame aisa nahi ki aapko push karenge, abhi sign karo, abhi karo. You will, if you are comfortable, we'll help you out. So please, if you are a homeowner, if you have high credit card debts, car payment, mortgage payment, call us. The consultation is absolutely free. Cash out can sometimes save you from a lot of stress and anxiety. Second thing, if you are a self-employed borrower, we can help you to buy your house without even looking at your tax returns, without considering your tax returns in lieu of your deposits in your bank statement. we can help you. And the last thing, again, for investment properties, we have a lot of different programs out there where we can, we don't even look at your tax returns. We don't need any income documentation. We qualify you based on the rental income of the investment property. So our dream home, anything commercial, residential, we can definitely help you whether it's real estate involved.
0: Thank you so much, Hussain Saab. मैं हर बार शायद कहती हूँ लेकिन I mean it. The way you clearly explain things ना बहुत आसानी हो जाती है लेमन को भी समझना. फिर जो इंटरेस्टेड हैं वो तो ऑलरेडी काफ़ी रिसर्च कर चुके होते हैं. ऐसे में वंस अगेन dreamhomemortgage.com इज द वेबसाइट लेडीज एंड जेंटलमैन. दैट शुड बी योर अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर प्रोफेशनल हेल्प. थैंक यू सो मच हुसैन साहब.
2: थैंक यू सो मच.

0: जी हाँ, हम ही हैं जो आपके लिए सारे वो जो हमारे लोकल बिजनेसेस हैं और प्रोफेशनल हेल्प है जो वो लेकर आते हैं, सो दैट ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. सो इफ यू आर ऑन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा एंड प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, तो आपके लिए लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज अ ग्रेट हेल्प. Attorney Seema Mehta and her experienced team specialize exclusively in immigration law, including EB-5, investor visas, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. तो अगर आपको इसके बारे में या EB-5 investor visa program के बारे में कुछ जानना है तो call करें इन्हें. Get in touch with them, email address info@seemamehtalawfirm.com and it is the law offices of Seema Mehta. मिलते हैं छोटे से break के बाद.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
3: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
2: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
3: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
5: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
6: मामू, देखो क्या हो गया.
7: ओ, क्या हो गया?
6: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
7: ओए, जर्मन का कमाल है.
6: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
7: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
8: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
9: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
10: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
11: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
10: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
11: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर, कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां.
16: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Amreen at 214-909-6601
17: or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
16: Amreen Salon, style that moves with you.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
19: Tracks that put you on the right track.

0: बार बार बार बार हम आते हैं एक दिन पर जिसका नाम है मंडे, और मंडे आते ही वो मंडे ब्लूज और फलाना ढिमकाना हम बात करने लगते हैं। लेकिन आज गपशप गली विथ मीठू में मंडे के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, जो अभी अभी मेरे दिमाग में उपजा है और मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछा जाए। क्या है ना कि जैसे अदरक हम जब डालते हैं एक रेगुलर चाय में तो उसका थोड़ा फ्लेवर बढ़ जाता है, या आप समझें कि जब आप नेटफ्लिक्स का में कुछ देख रहे हो और एक अच्छा सा कम्फर्टर लेके कोजी से एक सोफा पे आप बैठते हो तो वो एक अलग सी एक फीलिंग होती है ना, वो आप मतलब उस इट इज अनबीटेबल सो टू से राइट। वैसा ही कुछ आप मंडे के लिए करते हो क्या? मंडे को थोड़ा सा पैम्पर करते हो कि टू गिव दैट फेस लिफ्ट टू इट? बताइए अगर आप कुछ करते हैं स्पेशली टू मेक योर मंडे फील अ लिटिल मोर लिफ्टेड इन स्पिरिट्स, तो क्या है वो चीज़, वो जानना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो, और खाली हाथ नहीं आई हूँ जी, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ गिव अवेज। उनमें से एक गिव अवे मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को राइट नाउ। सो हियर इज योर चांस टू विन ए ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन DFW। एक सिंपल सा सवाल जो है जो मैंने आपसे पूछा है, जिसका ना कोई सही जवाब है ना कोई गलत जवाब है, बस आपको जवाब देना है। और अगर वो जवाब आपका हमें पसंद आ जाए, मतलब ऐसा कोई आइडिया जो लोग सुन के कहें कि यार मतलब यू नो दिस इज व्हाट आई नीड टू डू टू मेक माय मंडेस लिटिल मोर स्पेशल, लिटिल मोर पैम्पर्ड, तो वो क्या चीज होगी? यू आर लाइव ऑन एयर।
1: हाँ जी, हाँ पहले जी। तो बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल चंगी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हट्टी कट्टी
0: बिल्कुल। आप हमारी क्या अमिताभ की रेखा हैं?
1: अमिताभ की रेखा बिल्कुल सही पकड़ी हैं आप।
0: और राइट जी, बताइए मंडे को कैसे स्पेशल ट्रीट करती हैं आप? क्या वो स्पेशल चीज है जिसे
1: मैं कुछ नहीं करती लेकिन आज करूंगी।
0: अच्छा,
1: आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगी हूँ एक
0: okay.
1: और आप मेरे को आज पैम्पर कर सकती हैं।
0: अच्छा, आज
1: आज है मेरा बर्थडे और आप मेरे को हैप्पी हैप्पी वाला बना दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं हैप्पी बनाने के लिए आपको रेडी हूँ। बताइए कौन सा गाना लगाऊं मैं आपके लिए कि मतलब आपका भी दिन हैप्पी हो जाए, हमारे लिसनर्स का भी मंडे हैप्पी हो जाए?
1: आपका आपकी चॉइस।
0: ओए होए, ये बहुत बड़ा प्रेशर डाल देते हैं यार आप लोग। आप अपना फेवरेट गाना बताओ यार, आई शुड ट्रीट यू विथ योर फेवरेट सॉन्ग ना
1: यार। मेरे तो सभी फेवरेट हैं।
0: ऐसा
1: कौन सा बताओ?
0: अच्छा, सिंगर का नाम बता दीजिए तो
1: फिर।
0: हाँ
1: अच्छा, मैं बताती हूँ, चलो।
0: हाँ,
1: दो गाने देती हूँ, आप जो सा मर्जी लगा दीजिए।
0: डन डन।
1: एक तो तेरा हैप्पी बर्थडे, हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे,
0: ओके,
1: और
0: दूसरा
1: है एक लड़की भीगी भागी सी सोती रातों में जागी सी। तो आप इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगता हो।
0: यू नो आई एम अ बिग सकर ऑफ रेट्रो म्यूजिक, तो आप समझ ही सकती हैं मेरा रुख किस तरफ जा रहा है। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू दैट वन एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत अच्छे से मनाइएगा आज आपका मंडे, तो बहुत ही स्पेशल है एंड विल मेक श्योर वी कीप इट वेरी वेरी स्पेशल फॉर यू। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मिस्टर, थैंक यू।
0: एंड इट इज वेरी स्पेशली गोइंग आउट टू रेखा।

आप ही कहिए, ये कोई बात है क्या कि मतलब हम मंडे को जिस तरह से डेविलिश तरीके से हम ट्रीट करते हैं? क्योंकि क्या होता है ना कि जब लॉन्ग वीकेंड आता है और जब मंडे को छुट्टी मिलती है, तब ये डेविल हमारा मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे बन जाता है। तो प्रॉब्लम मंडे के साथ नहीं है, प्रॉब्लम हमारे एटीट्यूड के साथ है। तो यही एटीट्यूड मैं देखना चाहती हूँ कि आप में से क्या लोग करते हैं टू मेक दैट एटीट्यूड जस्ट राइट। आई विल टेल यू अबाउट माय एटीट्यूड टुवर्ड्स मंडे, द थिंग दैट आई डू टू मेक इट अ लिटिल मोर यू नो इंटरेस्टिंग फॉर मी, या लिटिल मोर वाइब्रेंट, लेट मी पुट इट दैट वे। सो मैं बात करूँगी उसके बारे में ये ब्रेक पे जो जाने वाले हैं उसके बाद, और आप ही थोड़ा सोचिए कि वो क्या करते हैं या कर सकते हैं कि आपको लगता है कि मंडे ना थोड़ा सा बेटर स्टार्ट करें। यार हमेशा ये मंडे ब्लूज शूज कब तक सुनते रहेंगे यार? दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management.

0: order, might just get coasted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज़्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो।
6: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
9: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Ibana, supported by major Indian non-profit organization in DAW.
10: Tracks that put you on the right track.

फ्रॉम द फिल्म चांद मेरा दिल जो 22 मई को रिलीज होने वाली है धर्मा प्रोडक्शन की ये फिल्म एंड जो धर्मा प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं इंट्रोड्यूसिंग दिस फिल्म इज ऑल्सो अपूर्वा मेहता एंड आदर पूनावाला ऑल अंडर धर्मा प्रोडक्शन बैनर ऑफ कोर्स करण जौहर के साथ एंड आई डोंट वांट टू मेक श्योर दैट यू ऑल नो कि ये फिल्म लक्ष्य कपूर और अनन्या पांडे की है जिसे 16+ का सर्टिफिकेशन मिला है मैं जो अभी अभी देख रही हूँ मुझे लगा था कि you know it is good to for everybody to watch probably it is that intense and that passionate college romance that is going to take a very serious turn and wo adulthood pressures and wo toxic narrative heavily driven by past mistakes and unresolved pain and struggle that it is going to talk about ye sara kuch ye jo plot hai ye main aapko padh ke bata rahi hu ha to clearly there is something way deeper than the usual romantic stories ki milte hain jhagda hota hai fir wapas aa jate hain it's way more than that probably and therefore that 16+ certification that Chand Mera Dil has gotten. उसी दिन एक और फिल्म रिलीज होने वाली है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ लेकिन उसके पहले जो बताने वाली हूँ इट इज अबाउट दिस वन प्लेस दैट हैज बीन फॉर 13 ईयर्स टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक और ये हमारी कम्युनिटी को काफ़ी सालों से बहुत तसल्ली से सर्व करता आया है नाउ ग्रोइंग विथ अ ब्रांड न्यू नेम एंड ए सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन इंट्रोड्यूसिंग ल्यूनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य ल्यूनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एंड इन हाउस लैब टेस्टिंग एक्सरेज सीटी स्कैन्स कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज ऑल under one roof now we are talking jo hota hai na ki alag alag jagah pe jana padta hai mujhe ye cheez na bilkul katai pasand nahi aata hai which means additionally then you have to find time to do it in your busy routine to ek hi jagah pe agar sab ho jaye to kya baat hai open 7 days a week for all of you do check out main hamesha bolti hu ki agar aap maan lijiye kisi ke sath hain already kisi clinic ko visit karte hain regular basis pe and you think you are good with it there is always something better do remember that and this is that better for all of you make sure that check out this new location the second Frisco location that we are talking about Lunoxy Medical and you can get in touch with Dr. Mandeep Acharya and his team and find out more All right, ladies and gentlemen, ये सातों दिन हफ्ते में खुले रहते हैं सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक वॉक इन एनी टाइम नो अपॉइंटमेंट नीडेड सो गो एंड चेक इट आउट लेडीज एंड जेंटलमैन एंड राइट नाउ चेक आउट दिस ब्रांड न्यू गाना एटलीस्ट ब्रांड न्यू फॉर मी क्योंकि ऐसे तो 4 दिन पहले रिलीज हो चुका है लेकिन मैं पहली बार अपने शो पे लगाने वाली हूँ इट इज़ फ्रॉम ए फिल्म दैट रिलीज लास्ट ईयर एंड एक्चुअली नॉट थिएट्रिकल रिलीज दैट इट सॉ इट वेंट टू मेनी फिल्म फेस्टिवल्स और अब फाइनली मई 22 को रिलीज होने वाली है ये फिल्म जिसका नाम है बंदर दिस अनुराग कश्यप फिल्म स्टारिंग बॉबी देओल सानिया मल्होत्रा सबा आजाद एंड सपना पब्बी नाउ सपना पब्बी इज ऑल्सो वन ऑफ दोज लेडीज दैट आई हैव रियली वॉच्ड हर and enjoyed her acting in the web series that she has been part of. Ab mujhe abhi right now mat poochiye. I think it was Anil Kapoor's 24 if I am not wrong. But I am drawing a blank. But I really like this actress here. Unhi ke saath Bobby Deol ka ye ek bahut hi beautiful sa gana from Bandar.

लुकिंग फॉरवर्ड टू ए कनेक्शन दैट आई वॉन्ट टू मेक विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि मंडे है आज का दिन. वैसे घड़ी में ला लीजिए, इट इज 11:44 लेडीज एंड जेंटलमैन बाय द स्टूडियो क्लॉक, और आज की तारीख है 18th of May. और मैं जानना चाहती हूँ ये सारी डिटेल्स के अलावा एक फैक्ट जो है वो ये है कि आज है मंडे, और मंडे को हम हमेशा डीमोनाइज करते आए हैं, और इसीलिए मेरा एक सवाल था आप लोगों से और वो सवाल अभी भी वैलिड है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट इज दैट समथिंग एक्स्ट्रा you do to sort of galvanize your Monday. You know what I mean? जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मैं मंडेज़ के लिए, ज़्यादातर मंडेज़ के लिए, नॉट एवरी मंडे आई विल से, जब बहुत ही ज़्यादा मतलब हैंगओवर रहता है फ्रॉम द वीकेंड, शायद तब नहीं हो पाता, लेकिन यूजली ऑन मंडेज़ आई थिंक आई कैन से दिस फॉर मैनी ऑफ अस आउट देयर, कि हम थोड़े ना शैम्पू वैम्पू करके थोड़े से अच्छे से तैयार होके निकलते हैं ऑन मंडेज़ टू वर्क, राइट? क्योंकि वो दिन थोड़ा थोड़ा स्पेशल ट्रीट करना चाहते हैं, तो कि ताकि थोड़ा सा एक अच्छा सा एक वाइब्रेंट सा स्टार्ट मिले हमें टू द मंडे. सो दिस इज़ वन थिंग आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑन इन माई मंडेज़ रूटीन, कि थोड़ा शैम्पू करके थोड़े से अच्छे से थोड़ा तैयार होके थोड़े से मतलब ऐसे मतलब अंदर से खुशी मिले जिसे ना, वैसे कुछ कपड़े पहन के वो निकलती हूँ. ऐसा नहीं कि कुछ स्पेशल कपड़े, लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ एक टी शर्ट होगा आपका या कुछ एक शर्ट होगा आपका जो आपके लिए बहुत स्पेशल है इन द सेंस दैट इट मेक्स यू फील गुड, बस वैसा कुछ पहन के यू नो आई स्टार्ट माई मंडेज. यूजुअली नॉट एवरी टाइम, देर हैव बीन टाइम्स जब वही तेल वाले बालों के साथ ही आ गई हूँ, लेकिन नहीं, आई ट्राई टू ऑलमोस्ट डू इट एवरी मंडे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल, क्योंकि वो ताजगी मंडे की ना थोड़ी अलग होती है, क्योंकि संडे इवनिंग से मैं थोड़ा चिल आउट करती हूँ, संडे पूरा संडे ही मैं थोड़ा सा इजी लेने की कोशिश करती हूँ. सो आई एम अ बिट मोर रेस्टेड देन यूजुअली इफ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स गोइंग ऑन फॉर द वीकेंड. सो यस, टेल मी योर मंडे मंत्रा क्या है. मैं जानना चाहती हूँ कि आप वो क्या चीज़ करते हो एडिशनली ऐड करने की कोशिश करते हो. नॉट नेसेसरीली एवरी मंडे दैट इट हैज़ बीन पॉसिबल फॉर यू, बट इट हैज़ वर्क्ड फॉर यू. दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. लेडीज एंड जेंटलमैन, देसी मंडी का जो ग्रोसरी हैम्पर है वो आपके लिए, अगर आपका जवाब हमें पसंद आ जाता है. 9722355555 number in the studio. Let's get you on, ladies and gentlemen. मुझे पता करना है कुछ आप लोगों के, कुछ अगर नुस्खे काम आ जाए किसी और के तो क्या ही बात है. ज़रूर जुड़े हमारे साथ. Once again, call me. This is गपशप गली with

आप और हम, एक मैं और एक तू, हम मिलके बनाते हैं ये कॉन्वर्सेशन दैट वी स्ट्राइक विथ ऑल ऑफ यू बिटवीन 11 to 12. अब मेरी ना ये बहुत सिंपल सी गुजारिश है आपसे कि आप लोग ना मतलब बिना किसी हेजिटेशन के प्लीज ऑन एयर आए और हमारे साथ बातचीत करें, बिकॉज गपशप गली विदाउट एनी गपशप इज नॉट राइट, राइट? और गपशप ऐसी होनी चाहिए ना कि एक तरफा थोड़ी ना, दो तरफा हो तो वो गपशप कहलाती है. इसीलिए आई वुड वॉन्ट यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ इट. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, for our listeners also to engage with us. 972-235-5555. Now, this part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US, and they offer innovative financial services. Ki aapke jo untapped potential hai, ye bahut achhi tarah se usko full utilization pe lekar aate hain. They use their decades of strategic tax planning and bookkeeping experience to enable small business owners succeed and build wealth by helping them save thousands, hundreds of thousands of dollars. So Mr. Anil Grandi at the helm of it, zarur unke saath aur unki team ke saath aap connect करें. इट विल बी सो वेरी मीनिंगफुल फॉर ऑल ऑफ यू दैट दे प्रॉमिस. वंस अगेन, इट इज मिस्टर अनिल ग्रांधी फ्रॉम एजी फिनटैक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ आई डिडंट मेंशन अर्लियर, हियर इज वंस अगेन द वेबसाइट agfintax.com दैट यू मस्ट विजिट एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम एंड मेक दैट कॉल. आई ऑलवेज से मेक दैट कॉल टू फाइंड आउट more about them. 4699429888 is that a number. agfintax.com. kya aap wahi soch rahe hain jo main soch rahi hu after listening to ek main aur ek tu?

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
8: कौन सा?
7: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
8: अरे सारे तो सेम है
7: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
8: ओ हाँ ये तो अलग है
9: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर विजिट श्रीकृष्णा.com
10: बेटा इतनी देर से बैठे हो होमवर्क हुआ
11: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है
10: रोज का सेम प्रॉब्लम
12: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मैकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
13: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
14: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
15: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ लुमडी लर्निंग सेंटर बिल्ड मास्टरी अनलॉक पोटेंशियल
16: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
17: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
16: वो तो बहुत महंगी है
17: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
16: ये क्या होता
17: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
18: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आज खिलाफ भरपूर आवाज उठाई Dallas और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए The Jago Times अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahir Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago भी, जगाओ भी. Exclusive media partner, Fun Asia.
19: तुमने फिर कार्ड यूज किया
20: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
19: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
20: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
9: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
21: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
16: Arre yaar, Dallas mein Punjab?
22: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam.
15: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
23: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.
24: 104.9 FM Fun Asia Radio Fun Asia Radio Non-stop Infotainment
7: यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इनटू फनेशिया रेडियो 104.9 FM और ये है गपशप गली विथ मी टू। हमारी ये गली सीधे अभी जाने वाली है जीनो क्रेडिट रिपेयर की तरफ और हमारे साथ मिस्टर दीप जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर द नंबर टू रीच देम, इट इज 8004009468 और वेबसाइट है xenocreditrepair.com। यू मस्ट विजिट द वेबसाइट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ दे कैन हेल्प यू। नाउ Xeno Credit Repair ऑफर्स अ फ्री क्रेडिट रिपेयर कंसल्टेशन जो इंक्लूड करता है एक कंप्लीट रिव्यू और वो आपके फ्री क्रेडिट रिपोर्ट समरी बना के और एक स्कोर जो है वो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड। Call them today to take advantage of their no obligation offer. और फिर एक बार xenocreditrepair.com इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ज़रूर चेकआउट करें ऑल द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड। I am so ready to take Mr. Deep from Xeno Credit Repair on the airwaves of Financial Radio 104.9 FM. बहुत सारी बातें होती हैं सर आपसे, तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू यू एंड हाउ हैव यू बीन।
0: Good afternoon, Meetu, and very good afternoon, Rudal. So I'm doing very well, and how are you doing today?
7: Doing very well, sir. और बहुत सारी जो हमारी बातें होती हैं ना, I'm sure it is reaching out to so many people out there जो कई बार hesitate कर जाते हैं। वो एक simple सा call होता है जो करना है to find out where they stand in terms of credit repair। और क्या है ना कि हमारी community में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर account एक बार collections में चला गया, you know, या कोई बड़ा medical bill unpaid रह गया, तो मतलब वो तो सालों साल फिर सही नहीं हो सकता। लेकिन Xeno Credit Repair एक्चुअली मदद कर सकता है उनकी भी, नेगेटिव मार्क्स हो, लेट पेमेंट्स हो, या कुछ इंक्वायरीज हो डिस्प्यूट के बारे में, इन सारी चीजों में बहुत सारी हेल्प कर सकता है। तो इसी के बारे में जानना चाहती हूँ सर आपसे।
0: जी डेफिनेटली। एक्चुअली Xeno Credit करता क्या है? जी Xeno Credit उन लोगों की हेल्प करता है जैसे आपने पहले मेंशन करा, उनको भी हेल्प करता है जो एक बैड क्रेडिट से स्ट्रगल कर रहे हैं
7: जी।
0: तो जिनका कभी ना कभी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करते भी हैं, लोन सेंक्शन नहीं हो रहे। लोन क्यों नहीं सेंक्शन हो रहे, इसकी काफी वजह हो सकती है, राइट? जैसे आपने बताया लेट पेमेंट हो सकती हैं, अकाउंट्स कलेक्शन में हो सकते हैं, राइट? चार्ज ऑफ अकाउंट क्लोज भी हो सकते हैं, कोई जजमेंट एंटर कर गई लास्ट टाइम जो अकाउंट जो बैलेंस इसको पे ऑफ नहीं करा, तो क्या करते हैं जो आपके लैंडर्स होते हैं वो आपका अकाउंट कलेक्शन में देते हैं, उसके बाद वो लॉ सूट के पास, लॉ फर्म के पास चला जाता है। सो इट्स अ साइकिल। तो ये जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी आपकी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं वो बैड कमेंट्स बनकर आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करती है। तो जब ये चीजें आप किसी की रिपोर्ट में एंटर करती हैं तो वो आपको लोन सैंक्शन कर होने नहीं देता। जब चाहे आपके स्कोर साइड बाय साइड आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है,
7: हाँ।
0: आपके स्कोर क्रेडिट स्कोर बढ़ भी रहे होंगे पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी बैड अभी आपको लोन सैंक्शन नहीं होते,
7: राइट? सो या आई मीन ये एक पूरा एक प्रोसेस है जिसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं, एक प्रोसेस जिसमें कि आप एज सिंपल एज यू नो देम सेंडिंग योर देयर रिपोर्ट और उसके बाद क्या होता है वो पूरा प्रोसेस जानना चाहती हूँ कि मतलब वेयर शुड दे बिगिन, आपको कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बाद क्या होता है?
0: जी डेफिनेटली। देखिए हमारे पास जो सर्टिफाइड क्रेडिट स्पेशलिस्ट हैं, जब भी कोई इंडिविजुअल हमें कॉल करता है, राइट, तो सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता है, उनका एक क्वेश्चन होता है सबसे पहले भी, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है और आपकी क्रेडिट रिपोर्ट, आपने कभी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करा है? तो अगर तो क्लाइंट हमें क्रेडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता फ्रॉम ऑल द थ्री क्रेडिट ब्यूरो एजेंसीज। आपको भी मालूम होगा अमेरिका में तीन मेजर क्रेडिट ब्यूरो एजेंसीज हैं जो आपकी रिपोर्ट को अपडेट करती हैं, TransUnion, Equifax एंड Experian,
7: राइट?
0: तो ये चीज अगर कोई क्लाइंट हमें कॉल करके ये तीनों चीजें हमें प्रोवाइड करता है तो हमारे जो सर्टिफाइड क्रेडिट स्पेशलिस्ट होते हैं आपकी रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं
7: जी।
0: आपकी रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं, आपकी रिपोर्ट में क्या क्या नेगेटिविटीज उसको एक साइड पे लेके आते हैं और क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं, दीज आर द नेगेटिव फैक्टर्स रिफ्लेक्टिंग इन द रिपोर्ट, सो दिस स्टेप शुड बी टेकन इन केयर ऑफ, सो आपका जो गोइंग फॉरवर्ड जो आपका क्रेडिट स्कोर जो वो कैसे बढ़ना है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को कैसे मेंटेन करना है।
7: अच्छा,
0: जैसे सिंपल से एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर डायग्नोज नहीं करेगा, ना ही कोई मेडिसिन रिकमेंड करेगा, ना ही अपनी फी बताएगा, राइट?
7: राइट।
0: तो ये अगर आप इसको कंपैरेटिवली इसके साथ लेके चलो, तो जब तक क्लाइंट हमें क्रेडिट रिपोर्ट नहीं शेयर करेगा तो हम उसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें सब कुछ तो है ना
1: जी।
0: अगर क्रेडिट रिपोर्ट शेयर करोगे विल लेट यू नो कि आपकी रिपोर्ट में क्या होना है और आपको गोइंग फॉरवर्ड कैसे गाइडेंस मिलेगी हमारी तरफ से, क्योंकि हम सिर्फ क्लाइंट को एनरोल नहीं कर सकते। हमारा मकसद होता है क्लाइंट को एनरोल करने के साथ साथ उसके स्कोर्स तो बढ़ाने ही बढ़ाने, पर उसको गोइंग फॉरवर्ड इतना गाइडेंस दे दो, उसको इतनी अच्छा पकड़ में आ जाए गोइंग फॉरवर्ड, उसको किसी भी क्रेडिट रिपेयर कंपनी की जरूरत ना पड़े।
1: सो बेसिकली उनको आप फाइनेंशियल एक एजुकेशन भी देते हैं कि कैसे अपने स्कोर को हैंडल करना है गोइंग फॉरवर्ड।
0: जी डेफिनेटली इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम उनको एजुकेट करते हैं थ्रू द फाइनेंशियल हैबिट्स गोइंग फॉरवर्ड। आपका जो भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन कैसे रखना है।
1: जी absolutely makes sense to get with the professional help that one can seek, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत सारी information online भी रहती है, लोगों को लगता है कि हम deal कर लेंगे, हम क्यों extra कुछ दें, लेकिन यहीं पर actually experts की opinion जो होती है वो काम आती है। मैं जाने से पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैसे एक खुद अपने आप से करने versus professional help में फ़र्क है।
0: जी देखिए, जब आप कभी भी कोई भी आप किसी भी क्रेडिट रिपोर्ट को फेच करेंगे ना, तो आपको यूजुअली लोगों में क्या आता है डिस्प्यूट, एक डिस्प्यूट कमेंट बड़ा कॉमन है लोगों के बीच। ठीक है, तो उनको लगता है डिस्प्यूट करना है सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे गए, किसी भी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर गए, डिस्प्यूट दिखा, डिस्प्यूट का बटन क्लिक करा, दैट्स इट। पर उनको ये नहीं पता भी कितने एक्ट्स हैं, देयर आर मेनी एक्ट्स जिसके अंडर हमें काम करना पड़ता है। FCRA जिसको फेयर क्रेडिट रिपोर्टिंग एक्ट बोलते हैं, FGDCPA राइट, सीज एंड डिसीज, इतने एक्ट्स हैं जिसके अंदर हमें, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनको पता है। लॉयर जो लॉयर है, अगर हमें सब कुछ पता तो लॉयर को क्यों हायर करते हैं, क्योंकि उसको टेक्निकल चीजें लॉयर को ही पता होता है, राइट
1: right?
0: तो अगर सब कुछ हमने खुद ही करना है तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, सात कला संपूर्ण हो गया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, राइट? तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू, आपको किसी ना किसी पे ट्रस्ट करना पड़ता है।
1: जी।
0: अगर आप हमारे पे ट्रस्ट करोगे, हमें कॉल करोगे, देखिए हम आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करते, जैसे मैंने आपकी जितनी भी आपके साथ मेरी इंटरव्यूज हुई
1: जी बिल्कुल
0: आपको बताया, राइट
1: राइट,
0: वी आर नॉट चार्जिंग एनी अपफ्रंट फी, हमारा कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो
1: right.
0: किसी क्लाइंट को, किसी इंडिविजुअल को अगर कुछ जरूरत है तो उसको हेजिटेंट होने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर हमें कॉल करो, आपकी हर एक चीज कॉन्फिडेंशियल है।
1: जी
0: राइट
1: जी,
0: तो हम सारी अमेरिका की सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें काम करते हैं विद नो अपफ्रंट फी, नो कंसल्टेशन फी, और क्या चाहिए, हम आपको आपके पैसे की सिक्योरिटी दे रहे हैं, राइट?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेक्स एब्सोल्यूट सेंस मिस्टर दीप। और आप हर मंडे को हमारे साथ जुड़ते हैं और अपनी एडवाइस एंड टिप्स लेकर आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। xenocreditrepair.com इज द वेबसाइट, और एक बार फिर मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ, नंबर है 800-400-XENO विच इज 800-400-9468। थैंक यू सो मच मिस्टर दीप, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू नेक्स्ट टाइम, सेम डे सेम time.
0: Right. Thank you very much, Peter.
1: Thank you. Thank you so much. And that was Mr. Deep from Xeno Credit Repair.

0: You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. ये वो वक्त है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं. And this time the सवाल is to do with a movie that was very well known for its music but not as much for the film itself. जिसमें एक ना एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने बचपन में इतना जोर जौहर दिखाया, वो अपनी जवानी में वो जौहर नहीं दिखा पाए. Basically a very popular child actor that he was but couldn't make it as a lead actor in the films. और ये वो दौर है, 90s का दौर है, जब महेश भट्ट की हर फिल्म कमाल की काम कर रही थी. राइट फ्रॉम यू नो आशिकी विच केम इन 1990 एंड देन दिल है कि मानता नहीं, हम है राही प्यार के, सड़क, एंड देयर वाज सर, एंड देयर वाज क्रिमिनल, देयर वाज सो मेनी अदर फिल्म्स. लेकिन ये एक फिल्म थी मेरे ख्याल से वन ऑफ द फ्यू फिल्म्स इन द 90s डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट दैट डिडंट वर्क एट द थिएटर. और ये फिल्म पूरे 30 साल पूरे हुए हैं इस फिल्म को कल ही, और इसीलिए मैंने सोचा कि इस फिल्म का जिक्र करते हैं और आपसे पूछते हैं कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ. इफ़ यू कैन पॉसिबली टेल मी विथ ऑल द क्लूज दैट आई हैव गिवन यू. You are live on air and guess what? You are playing for Panchatantr. जी हाँ, Panchatantr एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मज़ेदार खाना मिलेगा और उन मज़ेदार खाने में से एक चीज़ जो आप जीत सकते हो या आलू कुलचा या फिर छोले भटूरे that you can win from Panchatara which is on McDermott Drive in Allen. तो आप live on air हो और ये पहला मौका मैं आपको देने वाली हूँ. Let's find out if you know the answer to it. कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ मैं? Hello. नो, जख्म तो काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम फिल्म थी और बहुत अच्छी चली थी. एंड आई थिंक आपने जो वो लिंक पकड़ा ना कि चाइल्ड एक्टर के तौर पे बहुत पॉपुलर, मेरे ख्याल से कुणाल खेमू की आप बात सोच रही होंगी, राइट?
1: Yeah,
0: but no, it is not Zakhm because Zakhm did well actually in terms of box office if I talk about. Well, thank you so much for your call, but a very intelligent answer, I must say that. यहाँ पर ना मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म के लिए राजेश रोशन का म्यूजिक था और चाइल्ड एक्टर जो थे उनके साथ एक ऐसी एक्ट्रेस थी, आई थिंक इट वॉज हर डेब्यू फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बेली ए मूवी और टू दैट शी डिड एंड कुडंट डू एक्चुअली गुड एट द सिनेमाज. इंडियन सिनेमा के स्पेस में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई. दो तीन मेरे ख्याल से फिल्में की होंगी या पाँच छः की होंगी, लेकिन कुल मिला के नहीं चल पाई थी. एंड आई एम जस्ट about to tell you the name of the leading lady. If you are not able to guess, I guess I'm going to give one other chance to this listener of mine. You are live on air.
2: Papa कहते हैं.
0: बिल्कुल सही जवाब. मयूरी कांगो की बात कर रही थी यहाँ पे मैं. बिल्कुल सही. आपका नाम क्या है?
2: Zohaina,
0: you've just won for yourself from Panchatara restaurant. Congratulations. मैं ना बड़ी curious mind हूँ. मुझे हमेशा रहता है कि भाई आप क्या चुनेंगी. वैसे मेरी जानने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी जनता को जानने की जरूरत है, लेकिन आई एम जस्ट क्यूरियस वॉट विल यू ऑप्ट फॉर बिटवीन आलू कुलचा एंड छोले भटूरे. क्या खाएंगे आप पंचतारा से?
2: So my kids would go for छोले भटूरे.
0: Oh, फिर तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको.
2: दिक्कत नहीं होगी जी.
0: Thank you so much and please hold the line for me and I'll take all your details off air. और यहाँ पे फ्री में जो गाना सबके लिए चलाने वाली हूँ from the film पापा कहते हैं. जुगल हंसराज एंड मयूरी कांगो इन दिस वन डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट. म्यूजिक राजेश रोशन का, बोल जावेद अख्तर के जो सुपर हिट रहा, द एंटायर एल्बम वॉज अ बिग हिट एंड दिस वन बीइंग द सुपरस्टार इन द म्यूजिक एल्बम ऑफ पापा कहते हैं.

गोइंग टू टेक यू टू अनदर मूवी जो इसी फ्रेम में, इसी टाइम फ्रेम में रिलीज हुई थी. इट इज लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज कॉल्ड, लेट मी सी, मैं बार बार भूल क्यों जाती हूँ इस फिल्म का नाम, सरदार का ग्रैंडसन. यस, दैट्स द नेम ऑफ द फिल्म. रकुल प्रीत के साथ साथ जॉन इब्राहिम, अदिति राव हैदरी एंड अर्जुन कपूर इन दिस वन. इफ यू कांट हेल्प ग्रैंड मदर रिविजिट हर होम, मूव द होम टू वेयर शी इज. ये एक लाइन में मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी सरदार का ग्रैंडसन, जहाँ पे नीना गुप्ता इज द ग्रैंड मदर एंड उनके ग्रैंडसन है अर्जुन कपूर. और अगर ये फिल्म की पूरी पूरी कहानी आप मुझसे नहीं चाहते और देखना चाहते हो तो जरूर देखिएगा. इट इज अ लाइट हार्टेड कॉमेडी दैट स्टिल टक्स एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स, फॉल्स मिडवे विथ नीदर द जोक स्टैंडिंग आउट नॉर द इमोशनल साइड, द स्टोरी एक्सप्लोर्ड इफेक्टिवली. सो या, विद दैट रिव्यू आई एम नॉट श्योर इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू वॉच इट, but that is what I could tell you of the film, which is called Sardar Ka Grandson, and usi ka ek bahut acha sa meetha sa pyara sa gana hai. That is what I'm going to play for you as the last track of my show today. Meri show ka naam Gapshap Gali with me too, and this film, by the way, released 5 years back on this day, 18th of May 2021.

0: And that's pretty much all the time I have with you all. Up next is Simran aur mere jaane ka waqt ho raha hai. This is me too signing off for the day.
1: Door rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota, par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai this is home. Welcome to Desi Mandi Louisville, Dallas ka sabse bada desi grocery store, jahan har desi ek roof ke niche. North se south, street se festive, har taste, har culture, ek hi jagah. Pure desi, full mandi experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8823464611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: Astrology readings are for guidance only and results may vary.
5: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू सीएफओ एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज।
6: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated

दोस्तों हम बात कर रहे थे मंडे ब्लूज को भगाने के लिए, और इसके लिए ना कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस फोन उठाना है, फनेशिया में मुझे फोन लगाना है, कंफर्टेबल हो तो ऑन एयर आना है और बातें करना है मुझसे और हमारे लिसनर से भी, क्योंकि कहते हैं ना कि दर्द बांटने से कम तो हो जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और थोड़ा पर्सनल भी है। मुझे जानना है कि आपकी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है, कोई हार्ट ब्रेक एंथम है, कोई जिम मोटिवेशन सॉन्ग है, या फिर कोई ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक है जो रिपीट पे चल रहा है। ऑनेस्टली हर प्लेलिस्ट की अपनी एक स्टोरी होती है, हर सर्च का एक मूड होता है और हर गाने के पीछे ना कुछ तो छुपा होता ही है, रिलेटेबल होता ही है। तो आप अपनी प्लेलिस्ट खोलिए, दिल भी खोलिए, कॉल कीजिए हमें एट 972-235-5555 पे और मुझे बताइए कि क्या सर्च किया आपने, क्या ढूंढा, क्या कैसी प्लेलिस्ट ढूंढ रहे आजकल आप, और अगर हो सके तो मैं भी उसको प्ले करने का कोशिश करूंगी।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
3: Omar Khwaja.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
6: Excuse me. It's called being loyal.
5: It's called being predictable.
6: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
5: And what's so special at Neon Cactus?
6: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
0: Visit psychicramnath.com. Call 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving और Garland में उपलब्ध.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे. ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: क्रेविंग डिलीशियस इंडो चाइनीज एंड नॉर्थ इंडियन फूड? रेड हॉट चिली पेपर इज द प्लेस टू गो. विद लोकेशंस इन फ्रिस्को, मकीनी, रिचर्डसन एंड नाउ अ न्यूएस्ट लोकेशन इन एलन एट वाटर्स एंड 121. वेदर यू आर डाइनिंग इन, टेकिंग आउट और केटरिंग, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

दोस्तों मैं बताने जा रही हूं आपको देसी मंडी के बारे में, जो कि है वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन द टाउन। और देसी मंडी लाया है आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स इस वीक। अगर आप मंडे और वेंसडे को जाते हैं तो आपको मिलता है बाय वन गेट वन फ्री बिरयानी पे, नूडल्स पे और फ्राइड राइस पे। और अगर आप ट्यूजडे या थर्सडे को जाके वहां खाते हैं तो आपको मिलता है बाय वन गेट वन फ्री ऑन ऑल द डोसास एंड चाट्स। और ये ऑफर जो है सारे वीकडे पे है, 5 PM to 9 PM, मतलब आपका डिनर और शाम का स्नैक्स जो है वो तो काफी सॉर्टेड है मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ कैवियट्स हैं कि आप जो है इसको मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते, और कुछ दूसरे भी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आप चेक कर लें स्टोर पे जाके। मतलब और भी ज्यादा फ्लेवर, और भी ज्यादा सेविंग्स, वो भी पूरे हफ्ते, क्या बात है। देसी मंडी, वी शुड ऑल थैंक टू यू। और देसी मंडी जो है दोस्तों लोकेटेड है लुइसविल टेक्सास में, तो आप जरूर जाएं उस ऑफर का आनंद उठाएं। आज हम बात कर रहे थे प्लेलिस्ट के बारे में, और अभी अभी मुझे अली अमीन जी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि उन्हें जो है सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। और मैंने पूछा कि कोई स्पेसिफिक वजह है, तो ऐसा उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, बस अभी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को है ना सुकून मिलता है बस, कि दुख में भी सुकून ढूंढने वाले लोग हैं ये। बहुत ही खूब कहा अली जी आपने, और मैं मानती हूँ कि प्लेलिस्ट से थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी तो पता चली जाती है सच में। मतलब अगर किसी की प्लेलिस्ट में अरिजीत सिंह है तो बंदा इमोशनल है पक्का, अगर किशोर कुमार है तो फिर वो ओल्ड स्कूल है या ओल्ड सोल है। और कोक स्टूडियो का गाना अगर किसी के प्लेलिस्ट में बार बार बज रहा है तो उसकी पर्सनालिटी में काफ़ी डेप्थ है गाइज। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पर्सनालिटी भी गेस करें, तो बताइए कि आपकी प्लेलिस्ट क्या है, अभी क्या सुन रहे हैं, किस टाइप के गाने जो है आप सर्च कर रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए 972-235-55 पे, ताकि हम भी जान सके भाई आपकी प्लेलिस्ट के बारे में, हमसे शेयर नहीं करेंगे।

दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं प्लेलिस्ट की, क्योंकि हमें मंडे ब्लूज को भगाना है दोस्तों। और जब आप लोगों ने कॉल करके मुझे बताया अपनी अपनी प्लेलिस्ट के बारे में, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया और मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी ना, तो मेरा प्लेलिस्ट जो होता था, अगर कल एग्जाम है तो भी मुझे, अगर पढ़ाई करनी है तो भी जो है मैं सॉन्ग सुनते ही पढ़ाई करूंगी, चाहे वो लो फाई सॉन्ग्स हो और थोड़े एकदम स्लो सैड सॉन्ग्स, वैसे गाने सुनती थी। और जैसे ही एग्जाम खत्म होता था फिर तो फुल पंजाबी बीट्स एकदम ढिक चैक करने वाले गाने पसंद आते थे मुझे। जब ऑफिस शुरू हुआ तो भी ऐसा ही कुछ रूटीन रहा, तो भी मैं अगर मंडे है तो मेरे गाड़ी में जो है स्लो सा ऐसा सैड सा थोड़ा ऐसा सॉन्ग बजता रहेगा, और फ्राइडे वापस लौटते वक्त ऑफिस के सामने एकदम ढिकचाक पार्टी मोड एक्टिवेट करते हुए वाले सॉन्ग्स जो है मैं सुनती थी। अगर आप भी मुझसे अपनी प्लेलिस्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं 9722355 पे, क्योंकि मुझे है ना बहुत इंतजार है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी अगर प्लेलिस्ट ऐसी है तो बाकी लोगों की कैसी होगी, है ना। प्लीज कॉल कीजिए मुझे।

दोस्तों, क्या आप भी चाह रहे हैं अपने स्पेशल मोमेंट्स में थोड़ा और स्पार्क ऐड करने को, थोड़ा और यू नो शाइन ऐड करने को? तो आप जा सकते हैं मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में, जो कि सिचुएटेड है ऑन प्रेस्टन रोड फ्रिस्को में, और ये है आपका डेस्टिनेशन फॉर ऑल दिस स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, जो कि है एलिगेंट, टाइमलेस, और ये क्राफ्ट किए गए हैं शाइन करने को, चमकने को और मोमेंट्स को एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने को. फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स एंड इयररिंग्स टू डार्जलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स, ये जो है आप इसको इसमें जो है अपना परफेक्ट पीस ढूंढ सकते हैं फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, या खुद को भी कभी कभी ट्रीट देना चाहिए, है ना. अपने लिए भी कुछ डायमंड खरीद लीजिए यार, आप डिजर्व करते हैं. और एक्सपीरियंस कीजिए अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप को और उनकी ब्रिलियंस को एट मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स दोस्तों इन फ्रिस्को. और भूलिए नहीं, आप इसका जो है मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां की आपको सारी ही जानकारी मिलेगी उसके लेटेस्ट कलेक्शन के बारे में और उनके ऑफर्स के बारे में. तो फिर देर किस बात की, अभी ही ऐप डाउनलोड कीजिए.

0: कार्ड का कर्जा सच में उतर जाए और आप डेट फ्री हो जाएं, तो उरा को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बैंकरप्सी के हक में नहीं है। सेटलमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपको 50% से ज्यादा, आधे से ज्यादा माफ हो जाता है, जो बाकी आधा बचेगा उसकी आसान से किस्तें बन जाएंगी। तो आप आधा से ज्यादा कर्जा भी माफ करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड कोई भी हो सकता है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो पर्सनल हो, स्टोर का हो। ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्जा, आपकी अगर स्टोर आपके पर्सनल लोन्स हैं, या गाड़ी जो रीपोजेस हो गई है, बैंक गाड़ी उठा कर ले गया है, या गाड़ी जो टोटल हो गई है लेकिन उसकी इंश्योरेंस थी या नहीं थी, उसका जो लोन बाकी बचा है वो आपके सर पर है, उसको भी आप आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं, बशर्ते आप पूरा को कॉल करें। क्योंकि मिनिमम पेमेंट करने से नुकसान ये है कि एक तो आप हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जिससे क्रेडिट कार्ड का कर्जा नहीं उतरता, दूसरा नुकसान ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर नीचे जाता है और वो ऊपर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड का कर्जा बहुत ज्यादा है, तीसरा नुकसान ये है कि डेट टू इनकम रेशियो हाई होने से आपको नए क्रेडिट कार्ड या हाउस लोन नहीं मिलते। तो फिर मिनिमम पेमेंट देने का फायदा क्या? तो मिनिमम पेमेंट देने का फायदा तो इसीलिए है कि अगर आपका क्रेडिट भी इंप्रूव हो, तो जस्ट गिव अस अ कॉल, हमारा टोल फ्री नंबर लिखिए और आज ही डेट फ्री लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप अपने दोस्त अमन यानी मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 916-776-3555, 916-776-3555, अगेन 916-776-3555, और हमारी वेबसाइट है www.oora.org, लेकिन एक बोनस है, अगर आप नंबर नहीं लिख पाए तो एक गाना मिलेगा आपको, आप फाइनेंशियल रेडियो कॉल कीजिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन और गाने की फरमाइश के साथ मेरा नंबर ले सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच अमन, विल कनेक्ट विद यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों ये तो थे अमन, आपको बता रहे थे टैक्स रिलीफ सेगमेंट्स के बारे में, और बिल्कुल आप ज़रूर इनकी जो है वेबसाइट पे जाइए, इनको कॉल कीजिए अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो, और अच्छे अच्छे गाने इन्जॉय कीजिए।

0: दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर अमन फ्रॉम उरा डेथ रिलीफ सेगमेंट. और अमन, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके टैक्स रिलीफ प्रोग्राम्स के बारे में एंड हाउ कैन इट हेल्प आवर लिसनर्स. ओवर टू यू.
1: थैंक यू फानेशिया. सुनने वाले सभी लिसनर्स को उरा और अमन की तरफ से नमस्कार. ये महीना भी चलते चलते 18 तारीख हो गई, पता भी नहीं चला जब मैंने पहली तारीख को कहा था कि इस बार मिनिमम पेमेंट मत कीजिएगा क्रेडिट कार्ड की. और 15 दिन हो गए, अगर अभी भी क्रेडिट कार्ड की चिट्ठियां आपको आ रही हैं मिनिमम पेमेंट की, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि मिनिमम पेमेंट से क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतरेगा नहीं, रादर आप 40 से 47% इंटरेस्ट पे करेंगे. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्रेडिट

हाँ जी, आपको भी अगर बहुत भूख लगी है और आप चाह रहे हैं कुछ चीजी विद देसी ट्विस्ट का खाने का, तो आप फन पिज्जा किचन जा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर देने पे आपको मिल सकता है $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन, तो आई होप कि आप सब एक्साइटेड होंगे और बिल्कुल इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये है हमारा गिव अवे राउंड। जी हाँ, तैयार हो जाइए, मैं आपसे करने वाली हूँ एक छोटा सा सवाल और आपको एक देने वाली हूँ एक सीन, जिसको कि आपको गेस करना है कि ये कौन सी मूवी का है। बहुत ही इजी होने वाला है, सो आप तैयार हो जाइए, मैं बस क्वेश्चन बोलने ही वाली हूँ। तो क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट मैच है जिसको जीतना है नहीं तो गांव पे टैक्स लगेगा। सोचिए सोचिए कि ये कौन सी मूवी है। इसका जवाब देने पे आपको मिल सकता है फन पिज्जा किचन से $10 का गिफ्ट कार्ड। आप हमें कॉल कर सकते हैं 972-235-55 पे, और हमें ऑलरेडी कॉल्स आने लगे हैं, तब तक बाकी लिसनर्स गाना एंजॉय करें और मैं कॉल्स लेती हूँ।

थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे कॉल करके अपना अपना जवाब बताने के लिए. मैंने जो है इस सॉन्ग से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो कि हमारा गिव अवे राउंड था, कि मैंने आपको एक सीन दिया था और आपसे कहा था कि आपको मूवी का जो है नाम गेस करना है. तो सीन कुछ ऐसा था कि क्रिकेट मैच जीतना बहुत जरूरी है वरना गांव पे टैक्स लग जाएगा, और इसका सही जवाब है लगान. जो बहुत सारे कॉलर्स ने इसको बताया, सही आंसर बताया एक्चुअली सब ने, और जो सबसे पहले जिन्होंने आंसर बताया है वो है श्वेता दत्ता जी. तो श्वेता दत्ता जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं $10 का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्जा किचन. तो आप वहां जाइए और जो है अपना गिफ्ट कार्ड जो है गिव अवे वो लीजिए और एंजॉय कीजिए, वहां का फूड मील एंजॉय कीजिए. और थैंक यू सो मच टू ऑल दी अदर लिसनर्स जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया. आई होप यू एंजॉयड द गेम. और मैं थोड़ा फन पिज्जा किचन के बारे में बता दूं कि यहां पे है फ्लेवर और फायर का संगम. जी हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इनके पास है अचारी पनीर पिज्ज़ा, जहाँ पे आपको मिलेगा टैंगी अचार पंच विथ सॉफ्ट मेल्टिंग पनीर और स्पाइसेस में. और अगर आप मीट लवर हैं तो तंदूरी चिकन पिज्ज़ा भी है विथ स्मोकी परफेक्शन स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स. और अगर आपको पसंद है बोल्ड या ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, तो ये जो है इसके पिज्ज़ा का स्लाइस आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप जा सकते हैं funpizzakitchen.com पे. और आई वुड रिक्वेस्ट श्वेता कि आप जाएं और अपना फन पिज्जा किचन का गिव अवे एंजॉय करें.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
3: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
8: Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
9: Guidance ki baat ho to ek hi naam hai, Pandit Ram Tulsi. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
11: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
10: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
12: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं, रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
7: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338, The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
13: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
14: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
3: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
14: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
15: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन। Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
16: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे सिमी एके आरजे देसी गर्ल और शो है आफ्टरनून अड्डा एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय ओमर ख्वाजा विद हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। अगर आप भी इन्वॉल्व हो गए हैं किसी ट्रक या कार एक्सीडेंट में और अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में तो अटर्नी ओमर ख्वाजा जी विल फाइट योर केस एंड ही विल हेल्प यू गेट ऑल द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। और यू नो कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाता है और आपको जरूरत पड़ती है एक काबिल अटॉर्नी की जो कि आपको जो है केस के साथ हेल्प करे एंड यू डू नॉट हैव टू पे अंटिल यू विन। अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप ओमर ख्वाजा और उनकी टीम को कॉल कर सकते हैं एट 4693005046 या फिर आप विजिट करें attorneyomer.com। और दोस्तों अभी अभी हमने अपना फर्स्ट गिव अवे राउंड कंप्लीट किया था ब्रेक के पहले और अब वक्त आ गया है हमारा दूसरा गिव अवे राउंड का जिसमें कि आपको सिमिलर जो है मूवी गेस करना है। मैं आपको एक सीन दूंगी उस मूवी का और आपको गेस करना है कि वो कौन सी मूवी है। तो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, तो मैं सवाल पूछती हूँ। सवाल कुछ ऐसा है कि एक लड़की है जो कि शादी कैंसिल हो जाने पे यूरोप ट्रिप पे निकल जाती है। एक लड़की है जो शादी कैंसिल होने पे यूरोप ट्रिप पे निकल जाती है। अगर आपको जवाब पता है तो आप कॉल कीजिए 972-235-5555 पे। मैं इंतजार कर रही हूँ आपके जवाब का।

दोस्तों थैंक यू सो मच इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए. और अभी के जो हमारे विनर हैं वो है महेश कुमार. उन्होंने सही जवाब दिया है. क्वेश्चन ये था कि एक लड़की शादी कैंसिल होने पे यूरोप ट्रिप पे निकल जाती है और इसका जवाब था क्वीन. और इस पे मिलते हैं महेश जी को नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट इस रेस्टोरेंट में खाने पे. तो नियॉन कैक्टस जो है यहाँ पे मेक्सिकन फ्यूजन मिलता है विद ग्लोबल इन्फ्लुएंस. फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है, जबीहा हलाल ऑप्शंस भी हैं और बहुत सारे प्लेंटी ऑफ लाइक वेजिटेरियन चॉइसेस हैं बोल्ड फ्लेवर्स के साथ. और वाइब की तो पूछिए मत, वाइब है एकदम यंग कलरफुल मॉडर्न फुल ऑफ एनर्जी. ये परफेक्ट है आपके हैंग आउट्स के लिए, डेट नाइट्स के लिए. और अगर आपको चिल करना हो तो भी जा सकते हैं भाई, क्यूरेटेड कॉकटेल्स ले सकते हैं, मॉकटेल्स ले सकते हैं. इनका हैप्पी आवर है मंडे टू फ्राइडे एंड स्पेशल डील्स एवरी सिंगल डे, कुछ ना कुछ स्पेशल होता है. तो महेश जी आपकी तो लॉटरी लग गई है, आई वुड से आप तो बहुत कुछ अच्छा खाने वाले हैं. सो इन्जॉय एंड थैंक यू सो मच टू माई अदर लिसनर्स. बहुत सारे लोगों के सही जवाब थे बट महेश ने सबसे पहले सही जवाब दिया था, सो ये डिजर्व करते. बट यू गाइस कीप प्लेइंग, वी हैव मोर एंड मोर गिव अवेज कमिंग अप. ओके.

दोस्तों मैं आपको बताना चाह रही हूँ माई टाइम इक्विटी के बारे में, विच इज लेड बाई CPA सुधीर पाई, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को और उनकी फैमिलीज को टू बिल्ड अ स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी ये आपको सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ रिटायरमेंट, या फिर अगर आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करना चाहते हैं, तो माई टाइम इक्विटी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनलाइज सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं अराउंड योर गोल्स। तो विजिट mytimeequity.com या फिर कॉल कीजिए 4697021272 पे और आपको जो है और अधिक जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में।

ऑल राइट डैलस, लिसन अप और स्टोर ओनर्स, ये खास आपके लिए है क्योंकि रवि समर किक ऑफ इज बैक. हां जी, मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जून 3rd एंड 4th फ्रॉम 9 AM टू 5 PM. और इस साल ये और भी बड़ा और भी बेहतर होने वाला है क्योंकि इंटायर वेयर हाउस जो है ना, एकदम ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में बदलने वाला है. यू कैन एक्सपेक्ट क्रेजी डील्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस एंड फ्री गिफ्ट्स ऑल द डे लॉन्ग. आप वेंडर्स से मिल सकते हैं, आप डिस्कवर कर सकते हैं बेस्ट सेलर्स एंड स्टॉक अप लाइक नेवर बिफोर. वी आर टॉकिंग अबाउट रवीज इम्पोर्ट वेयर हाउस जो कि सिचुएटेड है 11029 हैरी हाइंस बुलेवर्ड में, बिल्डिंग ए, डैलस. डेट्स रिपीट कर देती हूँ, जून 3rd एंड 4th 9 AM टू 5 PM. और अब वक्त हो गया है मेरे जाने का. मैं कल आपसे दोबारा इसी वक्त यानी कि 12:30 से 2:30 बजे तक मिलूंगी, दोबारा ये शो लेके आऊंगी आफ्टरनून अड्डा और आपके लिए ढेर सारे गिव अवेज भी एंड अच्छे गाने के लिए. तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, कुछ नहीं, स्टे ट्यून्ड इन 104.9 FM फन एशिया. विल हियर, यू विल हियर मी गाइस टुमारो. ओके.

0: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
1: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
2: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: सब कुछ साफ रख सकते हो
4: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
5: क्योंकि ये कौन बोला
4: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पोलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
6: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 9728772500
7: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
8: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी
7: के टू ड्राइव मतलब
8: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है
7: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
8: 100%
9: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Financial Radio. Sun rahe hain aap. Main hu Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Ye hai aapka afternoon drive time. Aur ji main Sunehri Kiran aapke liye lekar aati hoon every Monday to Friday, 2:30 PM to 5 PM. We are together. Every day is a new flavor for you. Aur aaj hai Monday. Aur Mondays aap jante hain completely. Hafte ki shuruaat aap hi ko dedicate ki jati hai. Pasand aapki, aapke man pasand radio station. पे मैं आपकी मनपसंद आरजे लेकर आती हूँ. 9722355555 फोन लाइंस आपके लिए खुली हैं. 4 बजे तक आपकी फरमाइशें लूंगी. 90s से आगे का गाना रिक्वेस्ट कीजिएगा जी. मेरी ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर हैपनिंग हो या थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत हो तो ज्यादा अच्छा है. जरा उदास गानों से परहेज कीजिए ताकि सुनने वालों का मूड उदास ना हो जाए. बट दैट्स ऑल दैट आई हैव. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. दिस इज पसंद आपकी फिल्मी फरमाइश राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राफ्ट टाइम with Sunehri Kiran.

अगर आप अपने ख्वाबों के घर की तलाश में हैं, अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं, तो फिर ड्रीम होम मॉर्गेज से ज्यादा बेहतर जगह फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स नहीं हो सकती. 1998 से जी ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टू टर्न देयर होम ओनरशिप ड्रीम into a reality with personalized mortgage solutions. Stress free aur smooth process hai bilkul agar aap Dream Home Mortgage ke sath ye sara process karte hain to. They are licensed in all 50 states. Unki experienced team is committed to finding the right loan options jo ke khas aapki needs ke liye tailor kiye jate hain. Chahe aap pehli baar apna ghar khareed rahe ho ya aap upgrade karna chahte ho, refinancing karna chahte ho, koi bhi aapki requirements ho, to aapki ye jo होम ओनरशिप की ड्रीम है, ये ड्रीम होम मॉर्गेज के साथ कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कीजिए. आपको नंबर दे रही हूं, कॉल देम राइट नाउ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग अ हाउस, रीफाइनेंसिंग और री यू नो अपग्रेडिंग और एनीथिंग. दैट नंबर इज 972-245-5626 इज दैट नंबर. या फिर आप विजिट कर सकते हैं उनकी वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com. And as Mr. Panjwani always say, drop them an email. That is the best way to communicate with them. That email is info@dreamhomemortgage.com.

अच्छा जी, अनीत पड्डा जो हैं, जो कि सैयारा मूवी से एक सुपरस्टार के तौर पे उभरी इन 2025, कमाल की परफॉर्मेंस दी उन्होंने. करंटली जो है शी इज गेयरिंग अप फॉर हर नेक्स्ट बिग स्क्रीन आउटिंग, और ये मूवी होने वाली है शक्ति शालिनी, ये नाम है इस मूवी का. और द फिल्म विच इज़ पार्ट ऑफ द एक्सपैंडिंग मैडॉक हॉरर सर्कल्स या हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को आप कह लीजिए, ऑलरेडी जो है वो काफ़ी बज क्रिएट हो चुका है इस मूवी का. ऑडियंसिस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी. हाउ एवर, मूवी की जो रिलीज डेट थी वो 2026 के मेरे ख्याल गालिबन एंड में थी, लेकिन उस मूवी का किंग के साथ यानी कि शाहरुख खान की मूवी के साथ क्लैश की रिपोर्ट्स आने लगी, और उसकी वजह से अब जो गॉसिप के गलियार हैं उनमें ये बात की जा रही है कि अनीत पड्डा की शक्ति शालिनी जो है उसे शिफ्ट किया जा रहा है 2027 के ऊपर, ताकि वो किसी भी तरह शाहरुख खान की किंग मूवी से क्लैश ना करें. अब किंग के साथ क्लैश करना बड़ा रिस्की हो सकता है.

अगर आप ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताऊं जी कि श्री कृष्णा ज्वेलर्स इज अ प्लेस वेयर ज्वेलरी इज मोर देन जस्ट एन एक्सेसरी. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस और टाइमलेस ब्यूटी. उनके डिजाइन चेक कीजिए, फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइन टू स्पार्कलिंग डायमंड्स, और इसके साथ साथ कुंदन, स्टनिंग पोल की कलेक्शन. और हर पीस ऐसा है जैसे पर्सनली आप ही के लिए क्राफ्ट किया गया हो. इट इज सो स्पेशल, देयर ज्वेलरी इज सो स्पेशल. जरूर श्री कृष्णा को विजिट कीजिए. नाउ वेलकमिंग यू एट देयर न्यू लोकेशन. और लोकेशन कहाँ है जी? 13145 सुइट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में लोकेटेड हैं. द जिप कोड इज 75035. वंस अगेन, दिस इज 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को. तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स, दे हैव बीन क्राफ्टिंग ज्वेलरी एंड क्रिएटिंग सम चेरिशेबल मोमेंट्स फॉर यू सिंस 1967. यू रियली डोंट वांट टू मिस इट.

वेलकम बैक. सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. ये है पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन 104.9 एफएम फाइनेंशियल रेडियो पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. चार बजे तक आपकी फरमाइशें ले रही हूं और मंडे का दिन टोटली आपको डेडिकेट होता है. उसके साथ चार से साढ़े चार तक लेके आऊंगी आपके लिए वेदर, ट्रैफिक, करेंसी, गोल्ड प्राइस और फिर साढ़े चार से पांच बजे तक हमारे साथ कनेक्टेड होंगे संजय माथुर जी फ्रॉम माथुर लॉ ऑफिसेस, जो आपके सवाल लेंगे डायरेक्टली ऑन एयर और आपको जवाब देंगे. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सिविल लिटिगेशन, यू नो, क्रिमिनल लॉ एज वेल एज इमिग्रेशन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, फैमिली लॉ, आप कॉल कर सकते हैं हमें और अपना सवाल लाइव डायरेक्टली पूछ सकते हैं संजय माथुर जी से. बट दैट विल हैपन फ्रॉम 4:30 टू 5 पीएम. फिलहाल आपकी फरमाइशें ली जा रही हैं और सिलसिला फरमाइशों का जारी है.

जी, अभी अभी जो है वो शुरू हुआ है एक टॉक शो और उसका नाम है नॉट डन येट, द मालिनी अग्रवाल शो. और उसके अंदर आई रवीना टंडन, और रवीना टंडन याद कर रही थी अपने 90s के बॉलीवुड के ज़माने को. और उन्होंने कहा कि येलो जर्नलिज्म जो उस दौर में हुआ करता था, कितना टाइम हमें, मतलब वो ये कहती हैं कि शी इज़ ओपन अबाउट हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर एक्टर्स टू डील विद डैमेजिंग हेडलाइंस बिफोर सोशल मीडिया गेव सेलिब्रिटीज अ डायरेक्ट लाइन टू देयर ऑडियंस. तो वो ये कहती हैं कि जी पहले जब होता था, लोग खबरें छाप दिया करते थे और हमारे पास कोई जरिया ही नहीं होता था कि हम किसी तरह उसको चैलेंज कर पाएं या ऑडियंस तक ये बात पहुंचा पाए कि ये बिल्कुल झूठी खबर है और ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड और मेरा ख्याल है कि वी ऑल जिन्होंने 90s के दौर में जो बड़े हुए हैं, आपको याद है अगर आप शाम का जो अखबार आता था, इवनिंग स्पेशल हो गया, या जिसमें खास हीरो हीरोइनों की खबरें आती थी और उसको पढ़ा जाता था, तो हमें पता होता था कि आधा से ज्यादा टाइम ये गॉसिप है, बट इट वाज स्टिल सो इंट्रीगिंग एंड सो हैपनिंग कि उसका अखबार को खरीदा जाता था और उसकी खबरें पढ़ी जाती थी और उन्हीं खबरों को सच मान लिया जाता था. तो वही बात रवीना टंडन ने उस डिस्कशन में की कि इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू डील विद ऑल दीज फेक न्यूज जो हमारे बारे में लिखी जाती थी, हेडलाइंस बना दी जाती थी, जब तक कि सोशल मीडिया नहीं आया. एंड शी वाज सेइंग कि सोशल मीडिया के जितने नुकसान हैं, या कुछ कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन फायदा यह है कि हम अपनी बात को बहुत क्लियरली ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं. सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेल पॉइंट ओवर देयर. ऑलराइट, दैट वाज एक छोटी सी खबर आपको दे रही थी रवीना टंडन की. रवीना टंडन की बात हो रही है, तो लेट्स मूव ऑन विद दिस सॉन्ग.

0: With that, we are heading on to a short break. Bane rahiye mere saath. I will see you right after the break. This is your afternoon drive time with Sunari Kiran.
1: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
2: Kaun sa?
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
2: अरे सारे तो सेम है
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये ये ये देखो ये वाला
2: ओ हाँ ये तो अलग है
3: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर विजिट श्रीकृष्णा.com
4: बेटा इतनी देर से बैठे हो होमवर्क हुआ
5: मम्मा कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है
4: रोज का सेम प्रॉब्लम
6: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
7: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
8: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
9: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ लुमडी लर्निंग सेंटर बिल्ड मास्टरी अनलॉक पोटेंशियल
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
11: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
10: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
11: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
10: ये क्या होता
11: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
12: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
9: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
12: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
13: Tu rehkar bhi desi rehna aasan nahi hota. Par jab mile apni culture ki khushbu, apne khane ka taste, to dil kehta hai, this is home. Welcome to Desi Mandi, Louisville. Dallas ka sabse bada desi grocery store. Jahan har desi, ek roof ke niche. North se south, street se festive. Har taste, har culture, ek hi jage. Pure desi, full mandi experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
14: मामू देखो क्या हो गया
15: ओ क्या हो गया
14: नई गड्डी ली थी इतने में दम तोड़ दिया और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है
15: ओए जर्मन का कमाल है
14: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है
15: ओ नहीं ओए जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन मर्सिडीज ऑडी BMW VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार तू नंबर लिख मुन्नी 972-690-6623 कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार
16: जर्मन मोटर्स कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस
17: इट्स ट्रू हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: Immigration is a serious concern for our community. And when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, firm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
18: Dallas, are you ready for a mini India in one evening on Sunday?

yeah, you ready or not? You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran. Mein main aapke liye leke aayi hoon aapki pasand, aapke man pasand radio station pe filmi farmaish hazir hai. Aur ye aadha ghanta aur aapki farmaish hai, to mere paas kuch lined up hain jo main one by one karke play kar rahi hoon. Lekin is waqt hai conversation corner ka, and this conversation corner with Sunehri Kiran is brought to you by the Flavor Lounge. Flavor Lounge mein aapke paas mauka hai jeetne ka ye dal makhni ya phir dhaba style chicken curry. Or they are located on Preston Road in Frisco. This giveaway is valid for dine-in only. So please, iska dhyan rakhi. Agar aap pichle mahine mein Fun Asia ke kisi show pe ye jeet chuke hain, to ek mahine ka wait kijiye. You can only be a winner once a month. तो इसी के साथ अब जी फ्लेवर लाउंज में हम कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र भी किया, कई आप लोगों के फोन कॉल्स भी आए टू डिस्कस द पॉइंट कि रवीना टंडन ने अभी एक शो में ये बयान दिया या बात कर रही थी वो, शी वाज हैविंग अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन एंड दैट्स व्हेन शी सेड कि 90s का जो दौर था उसमें जब येलो जर्नलिज्म या लोग हमारे बारे में लिखा करते थे, हेडलाइंस एकदम से अखबारों में आ जाया करती थी और हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था ऑडियंस को बताने का या जवाब देने का कि this is true or this is fake. Jabki aajkal ke social media ke zamane mein we do get time to respond and tell the people ki nahi ye khabar

छूटी है या खबर सच्ची है, वी हैव अ प्लेटफॉर्म टू गिव आवर ओपिनियन. सो आप मुझे बताइए आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि मुझे डेफिनेटली याद है कि 90s के ज़माने में वो जो अखबारें, अभी भी देखिए गॉसिप तो हम सभी पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जो स्टार्स होते हैं उनकी लाइफ के साथ या उनकी खबरों के साथ कहीं ना कहीं गॉसिप एसोसिएटेड होती है. तो इट्स नॉट अबाउट 90s और इट्स नॉट अबाउट 2026, इट इज़ अबाउट कि वो गॉसिप जो आया करती थी या अब आती है, क्या वो सच होती है या फेक होती है, या उनकी अपनी पीआर टीम्स करती हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और कुछ जो भी आप इस बारे में बोलना चाहते हैं. कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण आपके लिए खुला है, विद ब्रॉट टू यू बाय द फ्लेवर लाउंज. तो 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, कॉल कीजिए और मुझे बताइए व्हाट इज योर ओपिनियन, आपका क्या ख्याल है. अगर आप 90s की गॉसिप पढ़ा करते थे तो क्या आप उतने ही शौक से पढ़ते थे, और कई बार हमें मालूम भी होता था कि ये झूठ है, फिर भी हम पढ़ते जरूर थे थोड़ा सा चस्का लेने के लिए. व्हाट्स योर ओपिनियन?

राइट ऑल द कॉल्स एक दो ऑन एयर ली और कुछ ऑफ एयर ली. और जलपा, अगर आप सुन रही हैं, यू आर द विनर ऑफ दिस फ्लेवर लाउंज गिव अवे दाल मखनी या फिर धावा स्टाइल चिकन करी. यू विल हैव टू डाइन इन ओनली एट द रेस्टोरेंट. दो दिन का टाइम दीजिए हमें आपका नाम और नंबर वहां पहुंचाने के लिए, और उसके बाद आपके पास 5 दिन का वक्त है. लेकिन आपको मुझे कॉल बैक करना पड़ेगा जलपा. प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन गेट योर इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द रेस्टोरेंट. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दीज वंडरफुल स्टोरीज, फॉर कनेक्टिंग विद मी. आई एब्सोल्युटली लव हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद यू. और फन एशिया इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutton. Rich, bold, no compromises.
8: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGPT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
9: घर की याद नहीं आई तुझे जैसे
10: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
11: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
10: सच में बिल्कुल घर जैसा।
11: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
16: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं।
17: Astrology readings for guidance only and results may vary।
18: अपनी roots भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
19: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
20: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
19: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
20: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
21: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
22: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
23: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
22: कैसे?
23: पेज 3 ईटरी?
22: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
23: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
22: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
24: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
25: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो यू डेफिनेटली आर अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. और इस स्ट्रेस से निकलना है आपने, यू डू नॉट हैव टू डील विद मोर स्ट्रेस, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी, लीगैलिटीज, पेपर वर्क. ये सब कुछ आपके लिए एक ऐसे अटर्नी आपको जरूरत है आपकी साइड पे जो ये सब कुछ हैंडल करें, ऑल द निटिग्रिटीज दैट आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस. एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. नॉट ओनली विल ही फाइट योर केस, ही विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. एंड द बेस्ट पार्ट, that you don't have to pay anything until you win. So, aapke liye ye completely win-win situation hai. If you are going through something as stressful as this, or you know of someone who's going through something like that, give them Omar Khwaja's number. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is that number, or visit the website attorneyomar.com, which is OMAR, attorneyomar.com.

0: जी हाँ, ये सुन रहे थे आप, मुंबई दिल्ली उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोल्ड प्राइस अपडेट का मुझे जरूर पता है। मंडे मे द 18th अकॉर्डिंग टू goldprice.org इस वक्त गोल्ड प्राइस पर अउंस है जी $4,566.26, जबकि गोल्ड प्राइस पर ग्राम राइट नाउ इज $146.81। कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $1.13 का इजाफा हुआ, जबकि एक अउंस सोने की कीमत में $35.15 का इजाफा देखने को मिला। But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran. And while we are heading on to a break, I must tell you कि संजय माथुर जी हमारे साथ कनेक्टेड होंगे 4:30 onwards till 5 PM। अगर आप कॉल करें और मैं आपको होल्ड पे डालूं एंड यू कैन हेयर हिम आंसरिंग प्रीवियस क्वेश्चन, प्लीज होल्ड योर स्पॉट इन लाइन बिकॉज यू विल बी नेक्स्ट इन लाइन। इफ यू कैन हेयर हिम, यू आर नेक्स्ट इन लाइन। सो डू नॉट लीव योर स्पॉट, डू नॉट ड्रॉप द कॉल, यू विल बी टेकन ऑन एयर right after he finishes answering the question. That's about it. I am heading on to a short break with you. Sanjay Mathurji of Mathur Law Offices will be with us 4:30 PM till 5 PM, taking your questions live about civil litigation, family law, child custody, as well as immigration. Anything and everything will be discussed here. 972-235-5555 is the number to the studio. Stay tuned.
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
1: Kya matlab?
2: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
2: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: Ab to karna hi padega, madam.
3: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
5: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
4: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: के टू ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
9: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
12: Aaja meri gaadi mein baith ja.
13: Baith jaun? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो,
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
17: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
0: Welcome back. You're tuned into 104.9 FM Fanisha Radio, your afternoon drive time. With Sunheri Kiran Leke, main Kiran Hazru hoon. It is time now to connect you with our legal segment brought to you by the Mathur Law Offices, a full service law firm. And we have today with us Mr. Sanjay Mathur, jo yahan maujood hain from 4:30 till 5 p.m. He will be answering your questions live regarding civil litigation, criminal, injury, family, as well as immigration law. You have any question, give us a call. 972-235-5555. Five is the number to the studio. Let's welcome Mr. Mathur on the airwaves of FinAsia. Good afternoon, Mr. Mathur. How are you doing?
16: I'm doing great. Thanks for having me.
0: Thank you so much for connecting with us. As always, Mr. Mathur, please begin by telling our listeners something about yourself, something about Mathur Law Offices, and how can you help?
16: So we're a litigation practice. We handle criminal, immigration, family law, and some civil litigation, personal injury. Usually what happens is we do a strict intake process. We decide how a case should be handled. We move forward with the case and with the agreements of our clients. A lot of our clients have a lot of complex issues with regard to criminal and immigration or family law and immigration.

0: With Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful income stream through a unique insurance-based strategy designed to boost your bottom line. And it doesn't stop there. They also help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-7345 or visit ConnectingAmericaFinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash. 321-888-7345, ConnectingAmericaFinancials.com.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
4: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
3: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
4: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
5: रितेश कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
5: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799. दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
9: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
11: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
12: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
11: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
13: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
3: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. Faisla Clarity ke saath.
14: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
15: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: to Heritage Polkis. Discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
1: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
3: Oh, Haseena Zulfo Wale Jaane Jahan.
4: सिर्फ हवा में नहीं स्टाइल में भी उड़नी चाहिए बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस Call Ambreen at 214-909-6601.
5: Or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
4: Ambreen Salon. Style that moves with you.
6: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
7: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha hai.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम
8: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे Lumity लर्निंग सेंटर जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं Lumity का कस्टम करिकुलर Frisco, Prosper एंड McKinney ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
9: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
10: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
11: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
12: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8823464611 और विजिट masterjoshiram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाएं
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी
14: तुमने फिर कार्ड यूज किया
15: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
14: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
15: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
0: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट आउटडेटेड या अनवेरिफाइड items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
16: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
17: Why? Why?
18: Are you dance karna hai na?
17: अरे तेरा भाई है ना यहाँ पे रुक अभी आ
19: எல்லாம் டேஞ்சர் ஆனல்லோ சுவப்பு நிறத்திலே சாரியில் ஞங்கள் எல்லாம் டேஞ்சர்

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds

0: Mandi experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at Desi Mandi. Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
1: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
2: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
1: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
2: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
1: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
2: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
1: नंबर बोल जल्दी.
2: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
3: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
4: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
4: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
4: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
7: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
8: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
7: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
6: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
1: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer? Oh... उमर ख्वाजा.
1: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

हेलो दोस्तों यारों, मैं हूँ पारो। आज थोड़ी सी जल्दी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, 7 बजे आने की बजाय थोड़ा सा पहले, यानी कि 6:40 के ब्रेक में टपक गई पारो आप लोगों से बात करने, मिलने ऑन दिस ब्यूटीफुल मंडे इवनिंग। आज बड़ा अच्छा वेदर है, थोड़ा सा गर्म है शायद कुछ लोगों के लिए, बट आई रियली लाइक इट। इट्स इट वॉज इन 90s अ लिटल बिट, लेकिन थोड़ा सा अभी कूल डाउन हो रहा है। सो आई होप सम ऑफ यू आर एंजॉइंग द आउटडोर्स इन द इवनिंग। व्हेन आई वाज कमिंग आई वाज वॉचिंग अ लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग एंड कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स वगैरह भी लोग खेलते हैं इस टाइम पे इवनिंग में। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस ब्यूटीफुल वेदर। इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, अगर ड्राइव करते करते घर वापस आते आते चाय अगर पीते पीते चाय की अजीजी कड़क कड़क चाय की अगर सिप्स लेते हुए अगर आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, घर वालों के साथ बैठकर अगर आप कुछ बातें कर रहे हैं और स्पीच बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, लेकिन चाहते हैं वो म्यूजिक ऐसा हो, ऐसा बढ़िया म्यूजिक हो दैट रियली मेक्स योर इवनिंग परफेक्ट, वेल यू नो द नंबर टू कॉल 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

0: हिमेश रेशमैया साहब का ये महबूबा का रीमिक्स, आई स्पेशली इन्जॉय द बैकग्राउंड में जो ये एक जनाब बोल रहे हैं और डायलॉग्स बोल रहे हैं वैसे शोले के, जो वेरी फेमस डायलॉग सांबा एंड कितने आदमी थे एंड ऑल दैट, बट ऐसा लग रहा है बीच बीच में जो उनकी कॉमेंट्री है, स्पेशली अगर आप शोले के कॉन्टेक्स्ट में देखें वैसे ही आप सुने तो एक तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड सी आवाज़ है जो पीछे से आ रही है. अच्छा भला गाना चल रहा है लेकिन उसमें मतलब उंगली ज़रूर करनी है जनाब ने पीछे से बोल बोल के कुछ कुछ कॉमेंट पास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है. आई मीन ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल द रीमिक्स स्टाइल, लेकिन जब मैं इसको सुनती हूँ और पीछे से वो उनकी कमेंट्री जो इस गाने का ही पार्ट है लेकिन उस तरह की कमेंट्री सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी याद आ जाती है मुझे, जैसे हमारे घर में इंडिया पाकिस्तान ऐसा होता है कि एक दादी अम्मा या इस तरह से एक कैरेक्टर रहती है घर में, या तो मेरे घर में इस तरह से एक मेरे पापा की बुआ जी होती थी, उनको भी हम दादी बोलते थे लेकिन वो पापा की बुआ होती थी, बुआ दादी, एंड वो हर चीज़ में बहुत कुछ कुछ वो पीछे से उनकी कॉमेंट्री आती रहती थी. तो मैं बाल कटा के आई, बाल क्यों कटा लिए, अच्छी लड़कियाँ बाल नहीं कटाती है, मतलब एक उनकी कमेंट्री पीछे से हमेशा हर चीज में चलती रहती थी. खाना ये बनाया, अच्छा एक ही सब्जी बनी है, अच्छे घरों में तो एक सब्जी नहीं दो या तीन तो बनती ही है, हर चीज में उनकी चलती थी. तो मुझे ये याद आ जाता है ये जब मैं सुनती हूँ, एंड इट टेक्स मी बैक टू सच इंटरेस्टिंग टाइम्स. लेकिन अभी भी होता है ऐसा, अगर आपके घर में होता है या आप खुद कॉमेंट्री देने वालों में से हैं, यू कैन कॉल एंड टेल 972-35-5555 पर बता सकते हैं इफ यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर और यू वांट टू लिसन टू अ सॉन्ग. जैसे अगला गाना, दलजीत दोसांझ साहब आए तो बड़ी ऐसी फुलझड़ी जलाकर गए कि बहुत सारे लोग अभी भी उनके गानों को याद कर रहे हैं और दे आर रिमेम्बरिंग द सॉन्ग्स एंड दे वांट टू लिसन टू हिज सॉन्ग्स. इसलिए शीना जी ने करा है दलजीत दोसांझ साहब का ये गाना रिक्वेस्ट.
1: ओ लम्मी लम्मी ज़ुल्फ़ां च रात काली है, कल्ले

एक्चुअली मैंने बड़े ध्यान से इस बार सुना ये लिरिक्स. वैसे तो पंजाबी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती है. दिल्ली वालों को थोड़ी पंजाबी आती है. हमारी अलग पंजाबी होती है, हमारी हिंदी अलग होती है, पंजाबी अलग होती है, इंग्लिश अलग होती है, सबसे अलग होती है, सबसे अलग हट के होती है. वो दिल्ली वाली जो लैंग्वेज है, दिल्ली का जो उसमें प्रीफिक्स लग जाता है या मॉडिफायर लग जाता है, उससे हमारी लैंग्वेज और स्टाइल सब मॉडिफाई हो जाता है. लेकिन फिर भी मैंने ये बड़े ध्यान से आज सुना तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि इसमें ये कह रहे हैं कि रब की बनाई हुई है शैंपेन, कुछ ऐसा कह रहे हैं. आई थिंक आई हैव टू रिसर्च दैट, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग. बट ये अलग बात है कि दलजीत दोसांझ साहब का जादू अलग ही होता है, एंड ही इज अ वेरी फेमस इंटरनेशनली. ही इज पंजाब, और जो पंजाब को से मतलब पंजाब तो है ही, पूरा इंडिया, ही हैज मेड इट वेरी वेरी फेमस. एंड लॉट ऑफ अस इंडियंस एंड पंजाबीज आर वेरी वेरी प्राउड. और मैं दिल्ली की हूँ तो आई एम ऑल्सो वेरी वेरी प्राउड ऑफ दलजीत दोसांझ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये हमारा बंदा है यार. एंड व्हेन वी सी आवर पीपल गेटिंग द रिकॉग्निशन एंड द लव इंटरनेशनली, इट जस्ट मेक्स अस ऑल फील वेरी सक्सेसफुल. घड़ी में हुए हैं 6:54. मैं रहूंगी आप लोगों के साथ 9 बजे तक, 7 बजे से 9 बजे तक आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज जल्दी आ गई हूँ. सो इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, यू नो नंबर टू कॉल, विच इज 9722359. ऐसा करते हैं, मैं अभी नंबर नहीं, मैं थोड़ा सा चेक कर रही थी हमारे लिसनर्स को क्या हमारा फोन नंबर पता है कि नहीं, बिकॉज आई नो यू नो अवर नंबर, आई वी गेट कॉल्स ऑल द टाइम. सो लेट्स सी, मैं ऐसा करती हूँ अभी नंबर नहीं बताती हूँ, एंड आई विल सी हमारे लिसनर्स को हमारा नंबर याद है या नहीं.

गजर ने यह इशारा किया है कि डालस के लोगों को अपुन का नंबर फनीशे का नंबर बिल्कुल अच्छे से याद है, 972-35-5555. बहुत सारे कॉल्स आए, मैंने इस बार नंबर नहीं बताया और बहुत सारे कॉल्स आए, रटा हुआ है नंबर, स्पीड डायल में है. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. और थोड़ी सी देर में एक ब्रेक में जाने वाले हैं, लॉट ऑफ रिक्वेस्ट एंड आई कंटिन्यू टू प्ले योर रिक्वेस्ट आफ्टर 7 PM एज वेल. कॉल कर सकते हैं आप भी रिक्वेस्ट के लिए अगर अभी तक नहीं किया है. भूषण साहब ने दिलजीत दोसांझ साहब के एक और गाने की कर दी है रिक्वेस्ट. जैसे मैंने कहा ना, दिलजीत दोसांझ साहब की बात करें तो ऐसे फुलझड़ी सी जल जाती है कि बस एक के बाद एक जलती रहती है. वो थी ना फुलझड़ी दिवाली पे, एक जलाते हैं लोग, फिर एक और जलाते, फिर कोई और आ जाता है जिसको आप पहचानते भी नहीं है, फुलझड़ी लेके आ जाता है, वो भी बीच में अपनी जला देता है. कुछ ऐसा ही हो रहा है इस टाइम पे. पारो इन द हाउस.